0: ये है लाइका गोल्ड।
1: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवे।

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पक्षियों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सनबंध।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहावी।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है भी होश

नाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेश, एक दूजी बोला खोवें लख होवें लखवीस, लख लख

जोर ना जीवन मरण नहीं जोर, जोर ना राज माल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोन पंच परवार।

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: Breakfast with Deep Raja.
2: I love the next song. I'm sure you will do too, especially if your name's called Lena.
3: मैं हूँ निशा नासिर, लाइक अ गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है. बिग शो सुनना भूलिएगा मत.

0: Breakfast with Dee Prancher.
1: Oh, how relaxing was that yoga session? I feel so free.
2: Speak for yourself. I can never let go. Bladder leaks.
1: I know, right? I'm so done compromising. I got a new bit of yoga kit. Always discreet pads. Here, try for yourself next week.
2: Love you lots, but this thin pad won't keep up with my heavy leaks.
1: Just trust me on this one. So, all zen and liberated, are we?
2: Let's just say I found my flow.
1: Always discreet. Live with no compromise.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com.
5: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 hour line 0730099823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823.
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
7: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी.
8: सामने काम कर मेडिकल दे ले अने नाकता चाहिए.
9: नाकता चाहिए इतना.
7: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी. प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख. डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक.
10: तू गांडो छे आगे वाला ब्रेक मारे तो पाछा वाला ब्रेक मारे ने यार
11: गाड़ी मारी दोस्ती.
7: स्टारिंग विराज खिलानी, दीप वैद्य, विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी. मित्रता इन सिनेमाज नाउ. यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया.
12: जब लड़की के सर पे बाप का साया ना हो तो वो माँ का ही रास्ता अपनाती.
13: इसे हमेशा याद रखना.
14: काश कोई आ जाए उन्हें समझाए.
15: Usayoni every day at 6 p.m. on Star Plus and watch anytime on Jio Hotstar.

0: Breakfast with Deep Raja.
1: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: हमारी रक्षक है वो.
3: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
4: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
3: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज नाउ. फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
1: लंदन, आर यू रेडी? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

0: is like a gold. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: हमारी रक्षक है वो.
2: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
3: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
2: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज नाउ. फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
4: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वटवुड. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Breakfast with Deep Raja. Leica Gold, traffic and travel.
2: The A112 Chigwell Row, Romford Road is closed down to a collision. That's heading away from New North Road down towards Fowler Road. Into Blackwall, the A124, that's Barking Road, is closed. That's down to Water Main Works. It's between Oak Crescent towards New Haven Lane in Canning Town. Better news along the M4 Heathrow Spur Road. The delays have now eased southbound away from the main M4 carriageway before the tunnels entering the terminals area. And up towards the M4 itself along the elevated section, delays continue there. It's pretty much stop-start away from Hayes at Junction 3 towards Brentford at Junction 2 for the A4. That's the latest.
3: Right now at Tesco Mobile, get your most powerful upgrade yet with the iPhone 18 Pro. The ultimate pro iPhone with 250 gigs of data, all for just £61.49 a month with club card prices, saving you £72. Even better, you'll also get a £100 Tesco gift card. It pays to be connected. Search Tesco Mobile. Every little helps. Total device costs £1,295.64. Ends 1st of November. Club card and 36-month credit agreement required. Monthly rolling airtime delinking after 24 months. See tescomobile.com/terms.
4: Leica Gold TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: 0730099823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823.
7: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी. रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी. कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा. वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे, फर्स्ट फ्लोर, यूनिट 2, साउथ राइसलिप, HA40JS. रोज कथा पछी महाप्रसाद, पोथी यात्रा, कपिल नारायण कथा, कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ. वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-228-7509.
8: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
9: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
10: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी.
11: सांभर एक काम कर, मेडिकल दे ले अने नाकता चाहिए.
12: नाकता चाहिए इतना.
10: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी. प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख. डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक.
13: तू गांडो छे आगे वालो ब्रेक मारे तो पाछे वालो ब्रेक मारे छे यार.
10: स्टारिंग विराज खिलानी, दीप वैद्य, विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी. मित्रता इन सिनेमाज नाउ. यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया.
14: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: हमारी रक्षक है वो।
2: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
3: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
2: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज नाउ। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
4: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 Our line.
5: पितृ पक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में सिद्ध आश्रम धाम में आयोजित है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्री नीलेश जी महाराज के मुखारविंद से पहली से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से। स्थान इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर 22 पामस्टन रोड हैरो HA37RR। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0208426 0678।

0: और ये तो खूबसूरत सा बैक टू बैक म्यूजिक, सागर किनारे दिल ये पुकारे, एंड व्हेन देयर इज एन अमलगमेशन लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज, तो वाह भाई वाह। एंड बहुत सारा शुक्रिया आप सब लोगों के मैसेजेस का, और सबने मेरी आवाज पहचान ली, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। कईयों ने कहा बहुत टाइम के बाद आई, पर आई तो सही ना, दैट्स इंपॉर्टेंट इजंट इट। होप यू आर एंजॉयिंग, होप यू आर हैविंग योर चाय की प्याली विद योर ओन घर वाली, नो बाहर वाली। इफ यू आर ड्राइविंग, इफ यू आर गोइंग टू जिम, या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं जाऊं, मैं आज वर्कआउट करूं कि नहीं करूं, तो प्लीज उठ जाइए बेड से, इनफ ऑफ इट, हैव योर चाय की प्याली और अ कप ऑफ कॉफी, गो बाहर, सच अ नाइस वेदर आउटसाइड, क्या करेंगे घर बैठ के, थोड़ा सा वर्कआउट ही कर लीजिए, एंड देन यू कैन हैव योर परांठास, आलू वाले राइट, और यू कैन हैव योर इडली डोसा, वॉट एवर। Of course, the weekend has kick-started and there's a lot of stuff going this weekend as well. I'm going to talk about that later on the show. और बहुत सारी बातें भी करनी है आपके साथ, क्योंकि आप सब लोगों को पता है मुझे बात करने का बहुत शौक है, और आप लोगों की भी सुननी है। So next 3 hours होगी थोड़ी सी वैगी राइड, जहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर एरा की कोई ना कोई मेमोरी को रिवाइव करूँ, चाहे वो बचपन की हो, चाहे वो जवानी की हो, चाहे वो पहला प्यार हो, या फिर बेसिकली कुछ भी ऐसी चीज़ हो जिसको देख के या सुन के आपको एकदम क्लिक करे, हाँ भाई यही थी वो मेमोरी, लेट्स ट्राई एंड रिवाइव, बिकॉज दैट व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, लाइफ इज़ टू शॉर्ट, इतना सोचना भी क्यों और सोच के मिला भी क्या, है ना, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, तो सुबह से ज्ञान नहीं शुरू होगा, वो एंड में होगा। फिलहाल तो जहाँ भी बैठे हैं, जस्ट मैसेज मी एंड लेट मी नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, आपके आसपास क्या हो रहा है, एंड वेदर यू ऑलरेडी हैड टी, or can someone send me a cup of coffee, I'll really appreciate it. I know Bharat Gangaram ji, you will be the first one, and lot of people, kayo ne meri awaaz kai aur presenters ke saath basically you know guess ki hai, itna samajh mein aa gaya logo ki Ritu ki nahi hai but kiski hai, kisi kayo ne to Sheena guess kar liya, but I'm gonna tell you later ki meri awaaz aur kis presenter se milti hai, any guesses, this is Sheena on like a girl.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So £1 in British sterling can get you up to 126.35 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or simply SBI Yono mobile app. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Like a Gold. This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
1: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald

0: now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी
2: सामने काम कर मेडिकल दे ले अने नाकता जाइए
3: એટલે
1: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक
4: तू गांडो छे आगे वालों ब्रेक मारे तो पाछळ वालों ब्रेक मारे छे यार तारी मारी
1: दोस्ती स्टारिंग विराज खिलानी दीप वैद्य विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी मित्रता इन सिनेमाज नाउ यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ye hai Laika Gold.
3: एंड येस फाइनल फ्यू डेज हैं, अब बस बाकी है. इनफैक्ट कुछ ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, आज ही का दिन बाकी है. टू द दिवाली स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क. इट टेक्स प्लेस ऑन द ओवो वेम्बली अरीना एंड दैट्स संडे 27th ऑफ सेप्टेम्बर, दैट्स टुमारो. डोर्स ओपन एट 4:30 PM विद अ स्टूडेंट प्री शो फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM और उसके बाद होगी मेन परफॉर्मेंसेज जो कि शुरू होंगी 6:15 बजे से और रात के 9:30 बजे तक. और अगर आपने अब तक टिकट नहीं बाय किए तो स्टिल देयर इज Sean, you can go and buy tickets www.diwalistory.com.
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: रामा रामा रामा डिस्को 82. What a beautiful track on a Saturday morning. Hope you're enjoying the music. Keep on showering the love. This is Shino and Laika Gold. और ये जो गाना है इसे पता है किसने स्पॉन्सर किया है? कोका नूडल्स. यू हैव टू ट्राई देम, दे रियली रियली गुड.
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स इज कमिंग विद मोर फ्लेवर्स एंड हेल्दी ऑप्शन इन अ कन्वीनियंट बोल. कोका नूडल्स, क्विक एंड टेस्टी नूडल्स इन 12 फ्लेवर्स.
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma on Leica Gold, Greater London.
0: And yes, it's all about the holiday breaks. Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact Southall Travel today on 028-574-8410. Southall Travel is at all protected, so why wait?
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Home is where it all begins, and Starbucks is the home of autumn. We've made the season a thing, so we know our way around it. A taste of autumn, however you like it. Whether you want to keep things hot with the iconic pumpkin spice latte or play it cool with our new iced apple crumble matcha latte. Come on in and stay as long as you'd like. After all, you're back at the home of autumn. Subject to availability while stocks last.
4: Ritu Sharma on Leica Gold.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: विजिट TravelHubWorld.com.
7: मायाबाई नी मौजवाण मा थई जाओ रेडी. माँ कृपा फाउंडेशन यूके प्रेजेंट्स भव्य डायरो. मायाबाई आहिर, जयश्री भोजविया अने निर्मल सिंह झाला साथे
8: 27 सितंबर 2026 ना रोज. वेन्यू, फर्स्ट फ्लोर, यूनिट 3, 10 स्टोन फील्ड वे, साउथ राइसलीप, HA40JS. टिकट्स 30 and £20. लाइट रिफ्रेशमेंट्स इंक्लूडेड. बुकिंग माटे कॉल करो रश्मि शाह 0777-287-509.
9: London, get ready for an unforgettable night.
10: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
9: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
10: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
9: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
10: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
9: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
11: Watford mein dinner plans. Thoda classy, thoda desi.
12: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
11: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak. Fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
12: Friends, family, ya special night out. यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वटवुड. कॉल 01923-227274. बुक योर टेबल टुडे.
13: लंदन, आर यू रेडी? राघव एंड्स प्रेजेंट्स टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम लेजेंड उदित नारायण एंड सन आदित्य नारायण परफॉर्मिंग लाइव विद बड़े मियां छोटे मियां दिस डिसेंबर. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.

0: कसम से मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आप लोगों को भी डेफिनेटली उतना ही मजा आ रहा होगा। दिस इज शीना सिटिंग इन फॉर रितु। खूब सारी बातें, खूब सारा प्यार इस गजब के दिन के साथ। एनीवेज़, आई जस्ट वांटेड टू चेक, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरी आवाज़ को काफ़ी और प्रेजेंटर्स के साथ कंपेयर किया था, एंड वी ऑल यू नो समवे वी साउंड, ऐसा होता है ना कि एक ही परिवार के होते हो तो सब लोग सेम ही साउंड करना शुरू हो जाते हैं, बट डेफिनेटली लोग, बहुत सारे लोगों के मेरी आवाज़ जो है रूबी जैसी सुनने में आती है, तो दैट इज़ क्वाइट अ बिग कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो तो डेफिनेटली शी इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ लाइक अ गोल्ड। बट थैंक यू सो मच, और ये मैसेज मैं ज़रूर रूबी तक पहुँचाऊँगी। एंड रूबी, यू हैव गॉट लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग, काफ़ी लोग आपको मिस भी कर रहे हैं, एंड वो कह रहे हैं कि रूबी हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है और हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं ऑन एयर। सो रूबी, डेफिनेटली यू टू कम बैक, एंड लॉट्स ऑफ लव टू रूबी।
1: लाइका गोल्ड, क्योंकि सांस भी कभी। दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही, एवरी डे एट 9 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
2: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
3: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
2: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
3: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
2: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
4: Hamari rakshak hai wo.
1: Balaji Telefilms presents The Van, Force of the Forest.
5: Mujhe ye jo ajeeb si cheeze dikhai de rahi hai, un sab ka matlab kya hai? Kaun kar raha hai ye?
1: Mystery, fantasy, action. The Van, starring Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia, in cinemas now. For UK release details, follow Bakrania Media on Instagram.

0: सांबा का तो मालूम है, बटर रंबा डेफिनेटली हो हो. Usually we have Christmas ka ho ho ho, but this time it's different one, isn't it? Santa Claus ka ho ho hota, but Bollywood kuch bhi kar sakta. Am I right or am I right? I'm always right, right? Or yes, this is Ashina sitting in for Ritu. Ek bahut hi khoobsurat sa section wo karte hain. Yaadon ka. So I'll try and do something on yaadein. And aaj to waise bhi ek bahut hi khoobsurat sa din hai. So, 26th of September. और आज एक खूबसूरत सा दिन इसलिए है क्योंकि आज किसी special एक्टर का जन्म हुआ था. Do you have any guesses? और जो 26 सितंबर है हम याद आज करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे ऐसे तारे को जिनका नाम लेते ही आंखों के सामने एक चार्मिंग सा चेहरा आ जाता है, एक खास अंदाज, एक खास सी स्माइल. एंड टुडे If he was with us, he would have been 103 years old. Abhi bhi yaad nahi hai. I'm talking about the legendary Indian actor, director and producer, Devanand Sahab. Born in 1923, the iconic evergreen hero, Hindi cinema ke, jinhone khoob surti se apna career start kiya aur pata nahi 100 se upar filmein bhi ki. Unke bare mein jitna bhi kahungi, bahut hi kam hoga, but we'll try and see. इस घंटे में कितने उनके मतलब ब्यूटीफुल से एक दो गाने भी बजाएंगे और उसके बाद बहुत सारी खूब सारी बातें भी करेंगे. और उन्हें ना बॉलीवुड के सिनेमा में, इंडियन सिनेमा में सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं जाना जाता था. उनके एक स्टाइल, उन्होंने एक स्टाइल क्रिएट किया था अपने एरा में, एक रोमांस क्रिएट किया और सबसे बढ़कर अपनी फिल्मों के गानों के जरिए हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी यादें छोड़ गए. और उनके हर गाने के पीछे ना कोई एक मतलब होता था. अगर ध्यान से समझें So definitely you'll get it. And I'm going to play a few iconic tracks also. So stay tuned. This is Sheena. Chaliye ikatthe yaad karte hain Devanand sahab ko. Aur aap mujhe bata sakte hain aapko kaun sa gana aapko unka jo tha bahut pasand tha. Kyunki wo aise insaan the jo sirf hamesha smile karte hue dikhte the. So let me know. And I'm going to play a nice track right after this. So stay tuned on Like a Gold. This is Sheena.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 126.35 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or simply using SBI Yono mobile app. Terms and conditions to apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है
3: Like a Gold.
4: तुम देना साथ मेरा.
5: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
1: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is Laika.
2: And yes, khoobsurat sa gana. And we are celebrating Devanand's. बहुत ही खूबसूरत सा बर्थडे सेलिब्रेशन गोइंग ऑन. और यस, जैसे कि मैंने कहा उनका एक अपना ही एक अलग ही स्टाइल था. और वो जो ब्लैक सूट, यू नो, कहा तो ये भी जाता है उनको ब्लैक सूट जब वो पहनते थे तो बैन था रोड्स पे, बिकॉज सब लड़कियां उन्हीं को देखती रह जाती थी. एंड दे वुड जंप फ्रॉम बिल्डिंग्स जस्ट टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिम. ओएमजी. इनफैक्ट अगर आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है, वेन ही फर्स्ट अराइव्ड इन मुंबई, और जो कि 1943 में था, और उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे, और उन्होंने क्लर्क काम किया गवर्नमेंट आर्म्ड ऑफिस फोर्सेस में, सेंसरशिप के ऑफिस में, और उनकी मंथली सैलरी सिर्फ 165 रुपए होती थी. टू सर्वाइव बिफोर गेटिंग हिज बिग ब्रेक इन हम एक हैं इन 1946. तो किसी भी एक्टर की कहानी इतनी सिंपल नहीं होती. हम उन्हें पर्दे पर देखते हैं और सोचते हैं वाह, यू नो, इनकी जैसी जिंदगी हमें मिल जाए. But every struggle has a story, isn't it? और ऐसी स्टोरी देवानंद की है. पर मुझे एक बात उनकी बहुत ही जो है अच्छी लगती थी कि उन्होंने कभी ये रियलाइज ही नहीं होने दिया कि वो बूढ़े हुए हैं. यू नो, दैट्स बेसिकली वॉज ऑलवेज यंग एट हार्ट, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज यू नेवर लेट पीपल इवन थिंक अबाउट कि बुढ़ापा आता ही है. यूं इंसान चले जाते हैं, पल गुजर जाते हैं, लेकिन यादें जो है ना, ये हमेशा जो है वहीं की वहीं रह जाती हैं. एंड द नेक्स्ट ट्रैक आई एम गोइंग टू प्ले इज डेफिनेटली वन ऑफ हिज बेस्ट ट्रैक. आई हैव टू से, नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हैं अभी हम प्ले करेंगे, पर लेकिन इस गाने में ना एक मतलब है. उस मतलब को मैं उस गाने के बाद समझाऊंगी, क्योंकि उस गाने में खूबसूरत सी फिलोसफी को दर्शाया गया है जिंदगी के बारे में. तो जिंदगी में हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है. एंड दिस वॉज इज अ ब्रेक थ्रू मूवी जहां उन्होंने एक्टिंग के बाद एक अलग डायरेक्शन दी. लेट्स हियर इट आउट.
0: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: This is Laika.
2: एंड यस, गाता रहे मेरा दिल. क्या खूबसूरत सा गाना था. नहीं, जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता. दिस इज गाने का बस यही मतलब है. कुछ लोग मिलते हैं, कुछ बिछड़ते हैं, कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं. लेकिन शायद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थी देव साहब जी की सिनेमा की खूबसूरत बात ये थी कि उनके करेक्टर्स में एक जिंदगी को जीने की जिद नजर आती थी, जो कि बहुत ही मुश्किल है, राइट. और शायद इसी वजह से उनकी फिल्में और उनके गाने आज भी यू नो दे लुक ऐसे लगते हैं. नहीं, और यही सब, और इनफैक्ट ये मूवी तो गाइड का था और वो सिर्फ एक्टर नहीं थे, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे. और उनकी यही फिल्म गाइड को हिंदी सिनेमा की लैंडमार्क फिल्म्स में गिना जाता है. और उनके स्क्रीन पर्सोना की तो मैं क्या बात करूँ, इतना डिस्टिंक्टिव था. एक मतलब उनका एक लुक, एक हेयर स्टाइल, और स्पेशली आई स्टिल रिमेम्बर एक स्कार्फ. OMG, अपने आप में एक फैशन स्टेटमेंट बन जाता था. अभी लोग जितना मर्जी ट्राई कर ले, लेकिन नेवर वी लाइक हिम, राइट, अंटिल हिज लास्ट ब्रेथ. ही ऑलवेज मेक्स श्योर कि जिंदगी को जियो, बिकॉज ये जिंदगी है ना, एक बार मिलती है तो दो बार क्यों सोचना. एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज अ ट्रैक आई हैव टू कन्फेस, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक्स है. बहुत पुराना गाना है और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बट इस गाने का जो डीप मीनिंग है ना, अगर आप एक लाइन सुनेंगे तो यू विल कनेक्ट विद इट. और बहुत सारे लोगों ने इस गाने की फरमाइश भी की है, तो आप सबके लिए भी, जिन्होंने फरमाइश की, जिन्होंने नहीं की, वो डेफिनेटली गाना सुने. फ्रॉम द फिल्म हम दोनों में जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया.
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
3: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired.

एंड दिस वॉज आवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, बट या एक ऐसी आवाज जिसमें क्लासिकल ट्रेनिंग की गहराई भी है और बॉलीवुड की

0: मस्ती भी, वन एंड ओनली कविता कृष्णमूर्ति, एक ऐसी सिंगर जिन्होंने इफ़ यू रिमेंबर हवा हवाई भी इतने स्टाइल में गाया था, और फिर उससे लेकर तू ही रे भी इतने सेंसिटिविटी से गाया था. तो शी इज़ ऑल अबाउट अ वर्सटाइल बेसिकली सिंगर. और आई जस्ट प्लेड वन ऑफ द ट्रैक विच डेफिनेटली इज़ वन ऑफ अ बेस्ट ट्रैक फॉर मी, बिकॉज इसमें इन्होंने अपने पूरे एकदम तरीके से इशारे दिए हुए हैं. एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज़ अ डेरी वैली गाना, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गाना, एंड ऑन द वोकल्स ए बी बेबी एस अमिताभ बच्चन एंड आशा भोसले. आर यू रेडी फॉर इट? वैसे तो कहते हैं दो लफ्जों की ही दिल की कहानी होती है, बट ये दो लफ्ज बहुत मुश्किल होते हैं. नहीं
1: लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: गंगा किनारे वाला,
1: किनारे वाला ओ छोरा, गंगा किनारे वाला ओ छोरा, गंगा किनारे वाला।
0: क्या खूबसूरत सा गाना है, एंड दिस एवरीवन नोज़ इज फ्रॉम द मूवी डॉन, एंड वी ऑल लव दिस सॉन्ग स्पेशली ऑब्वियसली। देन वी हैड द रिक्रिएटेड वर्जन जो कि शाहरुख खान जी ने भी किया था, बट इसमें जो अमिताभ बच्चन ने दिया था वो तो, दैट परफॉर्मेंस वॉज ऑलवेज ऑलवेज द बेस्ट वन। आई थिंक इट वॉज अ करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम, जहाँ पे उन्होंने डुअल रोल भी किया था, और उनकी एनर्जी कैफ्री डांसिंग एंड विद हाई ऑन वांग वो तो काफ़ी लेजेंडरी ही बन गया था। और किशोर कुमार ने इस गाने को बहुत ही खूबसूरत से गाया, एंड नॉट अबाउट दैट यू नो देयर वर फैक्ट्स, बट व्हेन आई वाज रीडिंग इट, ये भी कहा जाता है कि ये गाना पहले था ही नहीं मूवी में, और उसके बाद बेसिकली कम्प्लीटली फ्लिप हो गया, और जब ये गाना आया तो ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस की डेस्टिनी बदल गई। तो ये इस गाने ने जितनी इनको फेम दिलवाई है वो तो यू नो वी ऑल नो अबाउट इट। टिल डेट व्हेनेवर यू लिसन टू दिस ट्रैक यू जस्ट वांट टू जंप एंड देन डांस, बट इफ यू आर ड्राइविंग प्लीज डोंट डू दैट।
2: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. Ye hai Like a Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Looking at the currency update today, £1 is going to fetch you 126.93 Indian rupee, 367.23 Pakistani rupee, 85.56 Afghan Afghani, 162.93 Bangladeshi taka, 171.59 Kenyan shilling, and 1.32 US dollars.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Golden Pounds is trading at 104.14 pence per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
4: लाइका गोल्ड, बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे।

0: is Laika.
1: What a beautiful track. और इस गाने को आपने ना जाने कितनी बार सुना होगा, right? Unlimited time. And of course, this is definitely a गाना जो हमेशा सुन के कुछ नया सा ही लगता है. लेकिन क्या आप लोगों को पता है, परिंदा का ये romantic गाना एक्चुअली असल में एक बहुत बड़ी डार्क क्राइम ड्रामा का हिस्सा था. फिल्म में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की लव स्टोरी है, लेकिन दूसरी तरफ कहानी में कुछ ट्विस्ट है. क्राइम और वायलेंस का बहुत गहरा साया है, तो शायद ये गाना थोड़ा सा कंट्रास्ट कर देता है, मेक्स यू फील मोर लाइटर. बट अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग, वेरी इंटरेस्टिंग वन टू. एंड येस, आई जस्ट हैव टू टेल, इस गाने में बेसिकली ये फिल्म आया गया था विनोद खन्ना पे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. भैया, Hope you're enjoying the music, and after 1 o'clock on the airwaves, it will be Anurag ji with his golden rag. And I am gonna say bye bye. हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. Definitely मिलेंगे हम, कल मिलेंगे between 10 to 1, and there'll be a lot of dhamal as I always say. The show that's gonna be more entertainment and more entertainment. बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिला मुझे. Thank you so much for that. To all the listeners who are listening and to all the listeners who are listening and also messaging, I'll see you tomorrow between 10 to 1 and I'm going to leave you with this beautiful track. So keep on enjoying Saturday. Khoob enjoy kariye, khaiye, piye, gym jaiye, jo bhi kariye. But ek baat dhyan mein rakhiye. Zindagi ek baar milti hai, toh do baar kya sochna, right? This is Sheena saying bye-bye.
0: Ye hai Laika Gold. Laika
2: Gold. Kyunki saans bhi kabhi.
3: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: लता जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब की आवाज, मैंने प्यार किया राम लक्ष्मण साहब का संगीत। और जब भी वीकेंड में इस तरह का खास खूबसूरत सा मौसम होता है तो बस यही गाना याद आता है, चाहे ट्यूब में जा रहे हो, बसेस में जा रहे हो, लोकल कन्वेंस ले रहे हो, लेकिन आपको हर वक्त ऐसा ही महसूस होता है कि आया मौसम दोस्ती का। लोग निकलते हैं आउटिंग में वीकेंड के दौर पर और हम कहते हैं भाई आप लोग हमेशा जुड़े रहें हमारे साथ, कहीं पर भी चलें, चलते रहें, फिरते रहें, बैठते रहें, उठते रहें, लेकिन रहें हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे थे मैंने प्यार किया फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। मैं हूँ आपके साथ अनुराग। वीकेंड वाली इस पाठशाला में आप सभी का है बहुत बहुत स्वागत। वैसे इस फिल्म के बारे में अगर हम बात करें तो सलमान खान साहब इस फिल्म की पहली पसंद नहीं थे। अगर खबरों की माना जाए तो प्रेम का किरदार उन्होंने निभाया था और सुमन का किरदार निभाया था भाग्यश्री जी ने, लेकिन प्रेम के किरदार के लिए सलमान खान साहब सूरज बारजत्या की पहली पसंद नहीं थे, ये तो पक्का है। पहली पसंद थे मशहूर अभिनेता पीयूष मिश्रा जी और सुमन के किरदार के लिए भाग्यश्री भी पहली पसंद नहीं थी। आपने कॉमेडी विद कपिल का शो द कपिल शर्मा शो देखा होगा, उसमें उपासना सिंह जी का किरदार भी देखा होगा उन्होंने, तो वो थी पहली पसंद फिल्म मैंने प्यार किया के लिए। लेकिन भाई होता वही है जो ऊपर वाला डिसाइड करता है। सलमान खान साहब और भाग्यश्री जी के हिस्से में ये फिल्म आनी थी और सुपर डुपर हिट होनी थी और तमाम यंगस्टर्स के दिल में जगह बनानी थी, तो इसलिए ये खिताब गया सलमान खान और भाग्यश्री के कंधों पर। चलिए इसी के साथ शुरुआत हो चुकी है। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आबरू। अक्सर सुनते हैं लेकिन आज थोड़ा दिल वाले मूड से सुनिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका वीकेंड वाली पाठशाला में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 126.40। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Give your home its autumn glow up with Dunelm. Cushions and throws that make your sofa impossible to resist. Done. Cozy curtains that keep the heat in when it's colder out. Done. Table set for dining in without forking out. Done. Your perfect bedding for a longer, deeper sleep. Beautifully done. This autumn, make your home feel a little more you. With Dunelm, the home of homes.
3: ये है Like a Gold.
4: तुम देना साथ में। This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
5: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
6: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
5: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
6: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
5: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
7: What food mein dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
8: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
7: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
8: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923227274. Book your table today.
9: हमारी रक्षक है वो।
10: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
11: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
10: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया।

0: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
1: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
0: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
1: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
0: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
1: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
3: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
2: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
4: sonatours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
5: Like a gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे। फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: सोनी कोमी साहब का इस फिल्म के लिए संगीत है और रफी साहब ने क्या खूबसूरती के साथ इस गीत को निभाया है। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, अगले घंटे के लिए आप बताएं और हम सुनाने वाली थीम के लिए आज का गोल्डन बर्ड। आप सुन रहे हैं सुरज सजी वीकेंड वाली पाठशाला अनुराग के साथ।
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: भाई दिवाली स्टोरी के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, जो कि है सनातन इवेंट्स की तरफ से और एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो नेटवर्क। और ये इवेंट हो रहा है ओवो वैमली में, ओवो एरिना वैमली में, संडे 27 सितंबर। गेट ओपन हो जाएंगे 4:30 PM को ही और स्टूडेंट प्री शो स्टार्ट होगा 5 PM टू 5:45 PM और मेन परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी 6:15 PM टू 9:30 PM। टिकट्स अवेलेबल हैं अभी भी आपके लिए www.diwalistory.com पर।
0: दिस इज लाइक अ गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: किशोरदा की मखमली आवाज के साथ, जो कि फिल्म कटी पतंग के एक सॉन्ग से सुनाई दे रही थी आपको, लेकिन एक और आवाज जो सीधे जाकर दिल के दरवाजे को दस्तक देती है, इन सुरबाज का नाम है जग को जीतने वाले जगजीत सिंह साहब। सुनते हैं अगला गीत फ्रॉम प्रेम गीत फिल्म से।
2: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: ऑन राग विद गोल्डन राग।
2: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो।

0: तथा जी किशोरदा की आवाज में सीता और गीता फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। और अब वक्त आ गया है दिमाग की बत्ती जलाने का, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड। दोनों बड़े अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। चाहत चाहे, अच्छा चाहत क्या है? प्यार वाली चाहत होती है, और चाहे वो वाला चाहे है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर ही रहूंगा, ये वो वाला चाहे। चाहत और चाहे दो शब्द हमने आपको बताए, इससे रिलेटेड आप अपने फरमाइश के पिटारे से कोई भी गीत हम तक उछाल कर फेंकिए। सुनते रहे वीकेंड वाली पाठशाला।
1: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 or 24 Our line.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं। फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: किशोरदा लता जी की आवाजों में चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, फिल्म दो चोर का एक खूबसूरत सा नगमा भी आप सुन रहे थे। फिल्म का संगीत था पंचम दा यानी कि आरडी बर्मन साहब की तरफ से, और फिल्म में नजर आए थे बॉलीवुड के हिंदी सिनेमा के ही मैन और खूबसूरत सी तनुजा जी। और इस गीत को हम तक पहुंचाया है गिरीश पंजवानी जी, जया फ्रॉम ल्यूटन, अर्जुन साहब और गुरु सरनजीत जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और पहला गीत हमने मिस्टर आशिक फिल्म का सुनाया था, 1996 में फिल्म आई थी अलका याग्निक और सानुदा की आवाज में। ये गीत हमने आपको सुनाया गोल्डन राग की तरफ से, सूर्य सजी वीकेंड वाली पाठशाला की तरफ से। और अगला गीत किसके फरमाइश के पिटारे से निकल कर आ रहा है जल्द ही आपको बताएंगे। बने रहें हमारे साथ और जलाते रहें अपने दिमाग की बत्ती।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की। आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 126 रुपीज एंड 40 पैसे। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
3: This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
5: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
5: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
7: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
8: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
9: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
10: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
11: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
12: Southall Travel. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
13: Southall Travel can take you there.
14: Southall Travel, at all protected.
15: पितृ पक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में सिद्ध आश्रम धाम में आयोजित है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्री निलेश जी महाराज के मुखारविंद से 1 से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से। स्थान इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर, 22 पामस्टन रोड, हैरो, HA37RR। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0208426 0678।
16: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
17: My friend, दिमाग के सर्कट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक, तरक्की हुई है।
18: इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार।
19: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
20: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
21: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
22: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
23: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
24: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का खूबसूरत सा संगीत लाते जीव किशोर दा की आवाज में। दाग फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत हम तक पहुँचाया है अमित पटेल साहब और अमिता जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
3: Breaks are brought to you by Southall Travel.
1: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact KJ Southall Travel today on 020-857-48410. Southall Travel is at all protected.
3: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
4: Ye hai.
5: Like a gold.
4: Like a gold.
3: On Rug with Golden Rug.

0: सानुदा और बेला सुलाखे जी की आवाज में इम्तिहान फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत हम तक पहुंचाया है सोमिला मुंगुर जी और उल्ला जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
0: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 35, टाइटल राज बदन 5 ईयर्स शोकेस, होस्टेड बाय रूबी रजा एंड डूबी डोनी ब्रास्को। राज बदन टॉक्स टू रूबी रजा एंड डोनी ब्रास्को अबाउट स्टेपिंग इनटू द रोल ऑफ सीईओ ऑफ वन ऑफ द ब्रिटेन लार्जेस्ट एशियन रेडियो नेटवर्क्स द लाइका रेडियो नेटवर्क एंड ऑफ कोर्स हिज जर्नी बिहाइंड द टाइटल।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
3: लाइका गोल्ड
4: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
5: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com
6: 0730099823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823।
7: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी पार्ट ऑफ इट। क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ। Danny Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11, 11.
8: Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
10: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
11: Dosti, masti ane emotions ni ek anokhi story.
12: સાંભળે કામ કર મેડિકલ દેલે અને નાખતા જઈએ નાખતા જઈએ એટલે
11: સોલ સૂત્રા પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ મિત્રતા ફ્રેન્ડશિપ ની લવ સ્ટોરી પ્રોડ્યુસ્ડ બાય પાર્થિવ ગોહિલ એન્ડ માનસી પારેખ ડિરેક્ટેડ બાય ઓનિલ કર્ણિક
13: તું ગાંડો છે આગળ વાળો બ્રેક મારે તો પાછળ વાળો બ્રેક મારે છે યાર
14: તારી મારી દોસ્તી
11: સ્ટારિંગ વિરાજ ખેલાણી દીપ વૈદ્ય વિશાલ પારેખ એન્ડ વિશ્વા જોશી મિત્રતા ઇન સિનેમાઝ નાવ યુકે રિલીઝ ડિટેલ્સ માટે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરો બકરાનિયા મીડિયા
15: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time. Legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
16: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
15: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
17: Khakra Crunch Bhakri Munch. Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Yeh hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
18: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
17: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
19: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
20: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
21: Sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208 951 0000.

0: सबसे निराला मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All मैमस्टर products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.

0: रवि साहब की आवाज में दोस्ती फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत जो अजर अमर हो गया, क्योंकि रवि साहब ने इसे इतनी खूबसूरती के साथ निभाया और ये गीत हम तक पहुंचाया है। फरीदा गुलाम अली जी, शकु जोशी और रमन साहब ने बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 126.85, अफगान अफगानी 85.72, पाकिस्तानी रुपीस 367.08, बांग्लादेशी टका 162.91, श्रीलंकन रुपीस 437 एंड 1 US डॉलर 1.32.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: तो जल्दी से अपडेट कराते हैं आपको कि क्या है आज के गोल्ड रेट्स। गोल्ड रेट है पर ग्राम 104 पाउंड्स पर ग्राम।
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Leica.

0: अवार्ड विनिंग मूवी है. अवार्ड विनिंग इस मूवी के सॉन्ग्स अगर हम बात करें तो किशोर दा, लता जी और गुलशन बावरा साहब के लिखे हुए बोल, आर डी बर्मन यानी कि पंचम दा का बिल्कुल सधा हुआ संगीत. और ये गीत फिल्म अगर तुम ना होते से आया है और ये हम तक पहुंचाया है. भरत गंगाराम जी और संतोष जी ने बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही. हालांकि ये गीत किशोर दा ने भी अपनी सोलो वॉइस में गाया है, सैड सॉन्ग भी गाया है अपनी सोलो वॉइस में, और लता जी ने इसे अपने अलग ही अंदाज में गाया है. अगला गीत आ रहा है फिल्म छोटी सी मुलाकात से, और ये मुलाकात हम तक करवाई है इस गाने के जरिए मीना शाह जी ने. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मीना शाह जी. और अगला घंटा दिल की बत्ती जलाने का, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस के साथ आपका.
1: ये है लाइका गोल्ड. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Da New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Da New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
4: I left behind everything I knew.
3: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
4: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
3: The cycle of love. In cinemas now. Book today at thecycleoflovefilm.com.

0: गोल्डन रॉक संग सुरु सिसा जी वीकेंड वाली इस पाठशाला में एक बार फिर से है आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ अनुराग। बैक टू बैक गानों के साथ करेंगे इस घंटे की भी शुरुआत और उसके बाद हम आपको बताएंगे आज के गोल्डन रॉक के तीन ऑप्शंस। सुनते रहिए।
1: लाइक अ गोल्ड, लेट्स रिटर्न टू द बिगेस्ट हिट्स back to back, sponsored by travelhubworld.com. for the best service and unbeatable prices visit travelhubworld.com. travelhubworld.com
2: humse sasta kahin nahi mil sakta.
3: travel hub
2: at all protected.
1: Leica on rug with golden rug.

0: लता जी किशोरदा की आवाज में बड़े दिल वाला फिल्म का ये बड़ा ही खूबसूरत सा गीत। और अब वक्त आ चुका है आपको बताने का आज के गोल्डन रॉक के तीन ऑप्शंस। सबसे पहले कायदे प्लस कानून, तीन ऑप्शंस होंगे गाने के ए बी एंड सी, जिनमें से एक को आपको चुनना है और उसे वोट की तरह कास्ट करना है। जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो गीत बनेगा हमेशा की तरह भारी मतों के साथ आज का गोल्डन रॉक। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको बताते हैं आज के गोल्डन रॉक के तीन ऑप्शंस, जो कि ये रहे। ऑप्शन ए है एक तू जो ना मिला सारी दुनिया मिली, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। ऑप्शन बी है कोई नजराना लेकर आया हूं, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना। और ऑप्शन सी है मेरा मन तेरा प्यासा, फिल्म का नाम है गैम्बलर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आज के गोल्डन रॉक के तीनों ऑप्शंस। ऑप्शन ए है एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, फिल्म का नाम हिमालय की गोद में। ऑप्शन बी कोई नजराना लेकर आया हूं, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना। और ऑप्शन सी है मेरा मन तेरा प्यासा, फिल्म का नाम है गैम्बलर। वोटिंग लाइन्स हो चुकी हैं ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दें। एक बार फिर से रिपीट करूंगा आपके लिए गोल्डन रॉक के तीनों ऑप्शंस अगले गीत के बाद, जो कि है हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में। सुनते रहे वीकेंड वाली सुरों से सजी ये पाठशाला।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: आज ही इंडिया में पैसे भेजने के लिए आपको एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में मिल रहे हैं 126 रुपीज एंड 40 पैसे। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर करते रहे।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Leica Gold. तुम देना साथ मेरा।
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: लंदन, get ready for an unforgettable night.
7: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
6: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
7: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
6: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
7: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
6: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
10: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
9: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
10: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
9: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
10: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
9: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
10: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
11: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान।
12: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
11: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
12: तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
13: साफ़ो ट्रैवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
14: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
15: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
14: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
15: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
14: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
15: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। Limited offer. Terms and conditions apply.
16: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour, from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlus and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
17: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
18: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocenter.org.
19: Like a goal, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे।
20: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक कविता कृष्णमूर्ति जी और साथ में थे अभिजीत भट्टाचार्य साहब। माशूक फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे और इसके बाद एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस आखिर हैं क्या। बहुत सारे लोगों ने पूछा है जो सुन नहीं पाए हैं, एक बार फिर से ध्यान से सुने। ऑप्शन ए है एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। और ऑप्शन बी कोई नजराना लेकर आया हूँ, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना। और ऑप्शन सी है मेरा मन तेरा प्यासा, फिल्म का नाम गैम्बलर। अभी भी वोटिंग लाइन्स ओपन है, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें और हम तक अपनी पसंद का ऑप्शन भिजवाते रहें। अगला गीत आ रहा है लता जी और किशोर दा की आवाज में, फिल्म का नाम है गंगा की लहरें। लेकिन उससे पहले दिस इज लाइक अ गोल्ड, लाइक अ रेडियो नेटवर्क है कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद अ प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन। डिटेल्स एट laikaradio.com।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Kitni nazakat, kitni shafaqat is geet mein, Lata Ji Kishorda ki awaaz mein, Ganga ki lehre, bilkul lehro ki tarah ye geet hai hamare दिल की तरफ बढ़ता हुआ। अगला गीत आ रहा है रफी साहब और लता जी की आवाज में, फिल्म का नाम है हाथ की सफाई। छोटे से ब्रेक के बाद
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Need anything from Tesco? How about hundreds of the Tesco products you know and love, price matched to Aldi, helping you bag more of our fresh essentials and cupboard staples. So, next time you pop in store or shop online with us, just look out for the Aldi Price Match logo. Tesco. Every little helps. Comparable product prices checked twice weekly pro rata, varies by store. Selected products matched in express. Excludes promotions, Northern Ireland and Wash. See tesco.com/Aldi Price Match.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: TravelHubWorld.com Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays hum se sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit travelhubworld.com.
6: Maa Krupa Foundation UK taraf thi Srimad Bhagwat Saptah Gnan Yagna nu open invitation. 29 September thi 5 October sudhi, roj bapore 3 vagya thi sanje 6 vagya sudhi. Katha vachan karshe Pujya Shri Jignesh Dada. Venue 10 Stonefield Way, first floor unit 2, South Ryslip HA40JS. Roj katha pachi Mahaprasad. Pothi yatra, Kapil Narayan katha, Krishna Janma, Govardhan Leela, Rukmini Vivah ane Purnahuti हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ। वधु माहिती माटे कांटेक्ट करो 0777-228-7509।
7: हमारी रक्षक है वो।
8: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
9: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है?
8: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज नाउ। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
10: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
11: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
10: ये तो बताओ, कोई पता चला?
11: गुरु गुरु,
12: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
10: साधु, तो शुभकामनाएं में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
12: शीघ्र
10: शीघ्र
12: Crazy for Kishore at the Prince Regent Hotel on the 6th of November.
13: To book call 0208-514-5400. Book online at Eventbrite.
1: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: Tasty Track of the Hour, मोहम्मद रफी साहब और लता जी की आवाज में हाथ की सफाई फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, और इसी के साथ आपको बताना पड़ेगा कि भाई आज के लिए हो गई हैं वोटिंग लाइंस बंद और चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग. देखते हैं क्या है सरप्राइज आप लोगों के लिए.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 126.85, अफगानी 85.78, पाकिस्तानी रुपीस 367, बांग्लादेशी टका 162.92, श्रीलंकन रुपीस 437.02 एंड 1 US dollar 1.32.
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £104 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Feel good classics all day. This is Leica Gold.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.

0: रफी साहब की आवाज में गैम्बलर फिल्म का ये बड़ा ही शानदार गीत एस डी बर्मन साहब ने दिया था। इस फिल्म का संगीत देवानंद, शत्रुघ्न सिन्हा, जहीदा और जहीरा इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए थे। किसने इस गाने को दिया है वोट? संतोष जी, हना जी, उल्लास जी, सोमिला मुंगुर, अमर जी, शकु जोशी, फरीदा गुलाम अली जी, सालिम अख्तर, पंकज वर्मा, पुनीत पटेल, अफरोज शाहिल, माफ कीजिएगा, खालिद, कंचन रानीपुरी और सुमन और धानी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के इस गीत को वोट देने के लिए। वैसे सेकंड हाईएस्ट वोट मिले थे एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली हिमालय की गोद में फिल्म से। लेकिन कोई बात नहीं, जो जीता भाई सिकंदर, कल होगी आपसे मुलाकात सुपर संडे वाली महफिल में। नेक्स्ट आ रही है सरिता जी, डटे रहिए और सुनते रहें लाइका नेटवर्क।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
4: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket, not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
3: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
4: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915 or visit cashbackremortgage.co.uk.
3: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
7: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स Your travel mantra.
8: दोस्ती, मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी।
9: सांभळ, एक काम कर, मेडिकल देले अने नाखता जाइए।
10: नाखता जाइए એટલે
8: सोल सूत्र प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी, प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख, डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक।
11: तू गांडो छे, आगे वाला ब्रेक मारे तो पाछळ वाला ब्रेक मारे छे यार।
12: तारी मारी दोस्ती।
8: स्टारिंग विराज खिलानी, दीप वैद्य, विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी। मित्रता इन सिनेमाज नाउ। यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया।
13: Search is changing.
14: Customers aren't just using Google anymore.
13: They're asking AI.
14: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
13: One business, one recommendation.
14: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
13: Will your business be the answer?
14: Or the one that got left behind?
13: The future of search has already started.
14: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
13: Harty Hanks, the digital agency that

0: गुड आफ्टरनून। बैक टू बैक दो ब्यूटीफुल गाने आपने सुने, मेलोडियस गाने आपने सुने, और उम्मीद करती हूँ आपका मन भी खुश हो गया होगा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। अगर किसी वजह से आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। एंड अगर थोड़ा सा मूड ऑफ है, फीलिंग लो, तो कम ऑन, चीयर अप, लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इन्जॉय। जियो शान से, मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए। गाने तो चुन चुन कर लाई है सरिता आपके लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए। अगर आपके मन को भा जाए तो मुझे इशारा चाहिए आपकी तरफ से। यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी कि कहाँ बैठे आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और क्या ये गाने आपके पसंद की कसौटी पर खड़े उतर रहे हैं या नहीं। प्रोग्राम के पहले दो गीतों में एक वर्ड था जो बार बार आ रहा था, कौन सा वर्ड था, क्या आपने पहचान लिया? वैसे हमारी इंतशा आपने तो बिल्कुल पहचान लिया, अर्जुन जी आपने भी पहचान लिया है, थैंक यू एवर सो मच। और भी शायद होंगे जिन्होंने ठीक जवाब दिया, लेकिन मेरी नज़र आप दोनों के मैसेजेस पर पड़ी है जो कि बिल्कुल शुरू में ही आपने लिख दिया है, तो पूरे मैसेजेस मैंने नहीं पढ़े हैं। मेरे बिन बुलाए भी आप आते हैं और बड़े प्यार से मुझे अपने होने का एहसास दिलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से अपना प्यार मुझ तक पहुंचाते रहिएगा, एहसास मुझ तक पहुंचाते रहिए कि आपको ये गीत पसंद आ रहे हैं। पहला गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म करीब से, विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म को बनाया था। एंड इस फिल्म में काम किया था बॉबी देओल ने, साथ में थी शबाना रजा एंड मौसमी चैटर्जी, एंड संगीत था अन्नू मलिक का। इस गीत में एक नई आवाज़ थी और वो आवाज़ थी संजीवनी की, जो कि रियलिटी शो से बॉलीवुड में गई थी और कुछ एक गीत गाए। और वैसे मैंने उन्हें इंटरव्यू भी किया तो उन्होंने बताया कि वो बहुत से रिलीजियस गानों की टेप्स भी बनाती हैं, सीरीज़ उन्होंने बहुत रिलीज़ किए। नाम है उनका संजीवनी, अगर आप गूगल करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, और अगर उनका इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। दूसरा गीत मैंने फिल्म नूरी से चुना था, और नूरी मनमोहन किशन जी ने बनाई थी, डायरेक्ट की थी ये फिल्म। इस फिल्म में खयाम साहब का संगीत था, जाने सार अख्तर साहब ने और नक्श लायलपुरी जी ने गीत लिखे थे इस फिल्म के। एंड इस फिल्म में फरूख शेख थे, पूनम ढिल्लन एंड मदनपुरी ने काम किया था। 11 मई 1979 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपको पसंद आए। चलिए अब जरा प्रोग्राम को आगे बढ़ा लें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट, भी बता दें आपको, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ज़रिए आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो काम बड़ा आसान है। यू कैन ऑलवेज वॉक इन टू द ब्रांच, यू कैन गो ऑनलाइन, और SBI योनो मोबाइल ऐप अगर आपने डाउनलोड किया है तो उसके ज़रिए घर बैठे पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आर ऑलवेज देयर। और आज के दिन एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड कैन गेट यू 126 रुपीज़ एंड 40 पैसा।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: भाई, जो मेरे बहुत सी क्लेवर लिसनर्स हैं उन्होंने पहचान लिया कि क्या कॉमन है आज के गीतों में, कौन सा गीत आपको याद आ रहा है जिसमें ये वर्ड बार बार आते हैं, तो बताइएगा, मुझे जानना चाहूंगी आपसे।
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: We're finally going home for the wedding.
3: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
2: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
3: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
2: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
3: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
2: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: नमस्कार, मार्च 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટસીઇંગ, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર 4499 પાઉન્ડ્સ પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે, એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. વિઝિટ maharajatours.co.uk ઓર કોલ 07956154846.
2: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी.
3: सांभळ, एक काम कर, मेडिकल दे ले अने नाखता जाइए.
4: नाखता जाइए એટલે
2: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी, प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख, डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक.
5: गांडो छे, आगळ वाळो ब्रेक मारे तो पाछळ वाळो ब्रेक मारे ने यार.
2: स्टारिंग विराज खिलानी, दीप वैद्य, विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी. मित्रता इन सिनेमाज नाउ. यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया.
6: One performer,
7: countless personalities,
6: a whole universe of entertainment.
7: Sunil Grover, live UK tour 2026.
6: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
7: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises.
6: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
7: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
6: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
8: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
9: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
8: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
10: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 02087677627.
11: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
12: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: यही तो होता है प्यार। मुकेशी और लता जी की आवाज़ों में गाया हुआ ये गीत मैंने फिल्म पारस मनी से चुना था। 1963 में आई थी ये फिल्म एंड द फिल्म इज़ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट फिल्म टुगेदर ऑफ द म्यूजिक ड्यो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। और उससे पहले उन्होंने एज एन असिस्टेंट काम किया, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ने सबसे पहले फिल्म पारस मनी में संगीत दिया था। फिल्म के गीत लिखे थे असद भोपाली एंड फारूक कैसर ने। फारूक कैसर साहब ने हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिखा था, बाकी के गीत असद भोपाली जी ने लिखे थे। आई होप यू इन्जॉय द सॉन्ग एंड थैंक यू सो मच आपके बहुत ही मीठे मीठे प्यारी प्यारी बातों के लिए जो आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझ तक पहुँचा रहे हैं। सरित आप हैं संतोष जी, थैंक यू अर्जुन जी, उल्लास इन टोरंटो, सुमीला मंगर एंड सलमा मेडस्टोन में, भरत गंगाराम जी, फरजाना जी, हाना एंड आपको ना आपका नाम नज़र नहीं आ रहा है, आप हैं सुकु भाई, थैंक यू, मनु जी, भारती जी, फाल्गुनी मुकेश जी, आपका भी इंतजार, थैंक यू, हंसा वोरा जी, आप सभी का तह दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बता दूँ ये गीत जो पारस मनी से चुना था आप तक पहुँचाया।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: भाई बड़े दिनों से आप हमारे यहाँ से सुन रहे हैं दिवाली स्टोरीज कमिंग। यस, बस इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। कल है ये प्रोग्राम और इसके बारे में अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो जान लीजिए जल्दी से। फाइनल फ्यू डेज, क्या कहूँ, आज ही का दिन रह गया टू गो टू द दिवाली स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइक अ रेडियो नेटवर्क। इट टेक्स प्लेस ऑन एट ओवो वेम्बली अरीना ऑन संडे यानी टुमारो 27 सितंबर को। डोर्स ओपन एट 4:30 PM विद अ स्टूडेंट प्री शो फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM एंड द मेन परफॉर्मेंस विल स्टार्ट फ्रॉम 6:15 टिल 9:30। टिकट्स अगर अभी तक बुक नहीं की हैं तो गो टू www.diwalistory.com।
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: मोहब्बत जिंदगी है इस फिल्म का ब्यूटीफुल गाना आपने आशा जी की आवाज़ में सुना और उम्मीद करती हूँ एक अरसे के बाद जब आपने इस गीत को सुना तो इन्जॉय भी ज़रूर किया होगा. वेल मेरे सिस्टम ये बता रहा है कि दिस वाज लास्ट प्लेड ऑन 19th of July in 2025. सो कितने एक साल से भी ज़्यादा हो गया इस गीत को आपने सुना नहीं था. राजेंद्र सिंह कालरा जी आपकी फरमाइश मैंने देख ली है, आपने बहुत ही पुरानी फिल्म ढोलक का एक गीत सुनना चाहा जिसमें चोरी चोरी वर्ड आता है, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा सिस्टम इस गीत को मुझ तक पहुंचा नहीं रहा है. जो वेल सलोचना कदम जी ने इस गीत को गाया है बट बहुत पुराना हो जाएगा 1951 एंड विंटेज गोल्ड प्रोग्राम है ना मेरे बाद ही. आई ट्राई कि 58 और 59 तक के गाने सुना दूं लेकिन 51 थोड़ा ज़्यादा पुराना हो जाएगा. बट आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट सैंडी शाह कि ये गाना किसी रोज़ ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करें. थैंक यू एवर सो मच फॉर राइटिंग इन. और अब ज़रा अपने सभी सुनने वालों को मैं कुछ सूचना देने जा रही हूँ और वो ये है कि हेयर इज़ अ नंबर, ये मैसेज है मर्सिडीज बेंज वालों की तरफ से इन एसोसिएशन विद लाइका रेडियो नेटवर्क. हेयर इज़ अ नंबर दैट शुड मेक यू सिट अप. Vehicle downtime cost UK businesses an average of 1,172 per van per day, and that's why Mercedes-Benz vans created the uptime promise from a roadside assistance and extended service hours to real-time vehicle diagnosis and more. And they have a range of advantages designed to keep your business moving. Search Mercedes-Benz vans. आज ही आप इधर विजिट कीजिएगा Mercedes-Benz vans and today and then discover their uptime promise. Learn more at mbvans.co.uk/uptime promise. So ये थी सूचना जो आप तक पहुंचाए.
2: This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
1: आपको सुनवा रही है वो गीत जिनमें वर्ड आता है चोरी चोरी, not only once बल्कि दो दफा. भरत गंगाराम जी सुन रहे हैं आप भी, सोबत खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आप हैं फराज, थैंक्स. सुनते रहिएगा चेतनम में नीना प्रजापति, आपके नाम भी आ रहा है. किशोरदा की आवाज़ में गाया हुआ ये ज़बरदस्त गाना दिनेश पोपट जी आपके लिए भी सुनिए और इन्जॉय कीजिए.

0: लता जी की आवाज में ये जबरदस्त गीत आपने सुना, जबरदस्त गीत आपने सुना, और मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर इंजॉय भी किया होगा। बहुत सी पुरानी यादें भी ताजा हुई होंगी। फिल्म का नाम था आपकी कसम मुमताज, पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, एक पाउंड के बदले आज आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 126.85 रुपीज, अफगान अफगानी 85.82, पाकिस्तानी रुपीज 367.7, बांग्लादेशी टका 162.91, श्रीलंकन रुपीज 437 एंड यूएस डॉलर 1.32.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
2: LAIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold ka rate is foot market mein 104 pounds exactly for 1 gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Laika Gold.
4: Kyunki Saas Bhi Kabhi.
5: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahuti. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
6: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place.
7: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
9: Danube 11, 11. Danube Properties.
10: हमारी रक्षक है वो।
11: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
12: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
11: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज नाउ। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
13: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग, और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।

0: भाई थक गए होंगे आप, थक गए होंगे, बहुत कर लिया डांस इस गीत के साथ साथ। जिनका भी आज बर्थडे है उन सब के नाम किया मैंने ये प्यारा सा गीत जिसे मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म घर का चिराग। और ये गीत मैं ख़ास तौर पर देशराज जी की प्यारी सी बेटी शिल्पी दहले के नाम करती हूँ। शिल्पी जी आज अपना बर्थडे मना रही हैं, बहुत बहुत बधाई हो। आपकी ज़िंदगी में ऐसे दिन बार बार आएँ, हज़ार बार आएँ, खुशियाँ मनाती रहें, खुशियों को बांटती रहें और खुशियाँ बटोरती रहें। और आपके पापा का कहना है तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। और हेल्थी एंड लॉन्ग लाइफ के लिए मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। बता दूं कि ये गीत क्यों प्रोग्राम में शामिल हुई। पहला गीत था फिल्म तेजाब से और दूसरा गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म घर का चिराग से। और आज ये जिन पर ये दोनों गीत पिक्चराइज हुए थे वो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। नाम है इनका चंकी पांडे, वॉज बॉर्न एज सुयेश पांडे। सुयेश पांडे 26 सितंबर 1962 में बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था। एंड ही मेड हिज एक्टिंग डेब्यू इन 1987 विद द फिल्म चंकी। डेब्यू हिज एक्टिंग करियर विद द 1987 मल्टी स्टारर फिल्म आग ही आग ऑपोजिट नीलम कोठारी एंड गेन रिकग्निशन फॉर हिज सपोर्टिंग रोल एज बब्बन इन तेजाब। याद आया आपको, ये गाना भी उन पर ही पिक्चराइज हुआ था, सो गया ये जहां 1988 में आई थी ये फिल्म, विच अर्न हिम अ फिल्म फेयर नॉमिनेशन फॉर अ सपोर्टिंग एक्टर। फिल्म प्रोड्यूसर प्रहलाद नहलानी ने इन्हें दो फिल्मों के लिए साइन किया। ही गेव हिम ब्रेक इन 87 by signing for two films, his debut film and Paap Ki Duniya. His second successful film was Paap Ki Duniya again with the Sunny Deol and Neelam Kothari. And subsequently, Chunky Pandey appeared in many multi-hero films from 1987 till 1993. Aur inhone N Chandra ki film Tezab mein bhi bahut acha kaam kiya tha with Anil Kapoor and Madhuri Dixit ke saath. And Babban ka jo किरदार था काफ़ी मशहूर भी हुआ था। फॉर हिज परफॉर्मेंस इन तेजाब चंकी पांडे वॉज नॉमिनेटेड फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। एंड तब से उन्होंने फिर साइड हीरो जैसे ही फिल्मों में काम किया, मल्टी स्टारर फिल्म्स में काम किया, लाइक सीनियर एक्टर्स लाइक राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, सनी देओल, संजय दत्त एंड सम ऑफ दोज हिट फिल्म्स विद इन द सेकेंड लीड हम कह सकते हैं वॉज खतरों के खिलाड़ी, घर का चिराग एंड नाकाबंदी, जहरीले, ऐसी बहुत सी फिल्में। विश्वात्मा में भी थे 1992 में, लुटेरे इन 1993, देन आंखें 93 एंड पर्दा है पर्दा जिसमें वो सोलो थे, पर गाने इस फिल्म के इतने अच्छे नहीं चले थे। 1992 में आई थी ये फिल्म। सो चंकी जी को तो हमने मुबारकबाद दे दी और अब शिल्पी जी को भी मुबारकबाद दे दी। शिल्पी जी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और अगर आज आपका भी बर्थडे है तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपकी ज़िंदगी में ऐसे दिन बार बार आए, खुशियाँ मनाते रहे हैं आप। और अब रेस्ट ऑफ द आवर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं देवानंद जी की फिल्मों के गीत आप तक पहुंचाऊं, एज इट्स हिज बर्थ एनिवर्सरी टुडे। 103 ईयर्स ओल्ड होते अगर जीवित होते तो। उनकी फिल्मों के गीतों में, दो गीतों में मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूं कि कौन सा गाना होना चाहिए। फूलों के रंग से किशोरदा का गाया हुआ फ्रॉम द फिल्म प्रेम पुजारी, और उसी फिल्म का एक और गीत है शोखियों में घोला जाए। इन दोनों में से कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है, फूलों के रंग से या फिर शोखियों में घोला जाए। ए इस फूलों के रंग से, बी इस शोखियों में घोला जाए। जो उन सभी गीत आपके दिल के करीब है जल्दी से लिखकर भेज दीजिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट, इनके जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी तो बहुत काम आसान है। यू कैन गो इनटू द ब्रांच, ऑनलाइन जा सकते हैं या फिर SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर कीजिए। आपको आज एक पाउंड के बदले, ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले मिल सकते हैं 126 रुपीज़ एंड 40 पैसे। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Right now at Tesco Mobile, get your most powerful upgrade yet with the iPhone 18 Pro, the ultimate pro iPhone with 250 gigs of data, all for just £61.49 a month with club card prices, saving you £72. Even better, you'll also get a £100 Tesco gift card. It pays to be connected. Search Tesco Mobile. Every little helps. Total device costs £1,295.64. Ends 1st of November. Club card and 36-month credit agreement required. Monthly rolling airtime delinking after 24 months. See TescoMobile.com/terms.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a Gold. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: માયાભાઈની મોજમાણમાં થઈ જાઓ રેડી. માં કૃપા ફાઉન્ડેશન યુકે પ્રેઝન્ટ્સ ભવ્ય ડાયરો, માયાભાઈ આહિર, જયશ્રી ભોજવિયા અને નિર્મળસિંહ ઝાલા સાથે
5: 27 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ. વેન્યુ: ફર્સ્ટ ફ્લોર, યુનિટ 3, 10 સ્ટોન ફિલ્ડ વે, સાઉથ રાઇસલીપ, HA40JS. ટિકિટ્સ 30 અને 20 pounds. લાઇટ રિફ્રેશમેન્ટ ઇન્કલુડેડ. બુકિંગ માટે કોલ કરો રશ્મિ શાહ 0772-287-509.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Royal Chai लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री. परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
1: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
1: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
1: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
1: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।

0: पर, डीएबी डिजिटल रेडियो पर, एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइका गोल्ड.com पे। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

व्हाट अ सॉन्ग, ब्यूटीफुल गाना है। ऐसे गीत हम जब भी सुनते हैं तो डूब जाते हैं गीतों में। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। देवानंद जो कि पैदा हुए थे, माँ बाप ने जो नाम दिया था वो था धर्मदेव पिशोरीमल आनंद। तो उन्होंने धर्मदेव में से देव लिया और

0: और किशोरी मल को निकाल दिया और नाम रखा देव आनंद। 26 सितंबर 1923 में इनका जन्म हुआ था और 3 दिसंबर 2011 में इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन पीछे छोड़ गए अपनी फैन फॉलोइंग। अपनी उन फिल्मों के ज़रिए ये हमेशा हमें याद दिलाते रहेंगे कि व्हाट अ ग्रेट एक्टर ही वाज, व्हाट अ ग्रेट डायरेक्टर ही वाज, प्रोड्यूसर, राइटर। एंड पद्म भूषण इन्हें मिला था 2001 में, दादा साहेब फालेकर अवार्ड मिला था 2002 में, एंड आज उनकी 103rd बर्थ एनिवर्सरी पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। Born in Shakkargarh in undivided Punjab, Devanand arrived in Bombay, now Mumbai, with dreams of cinema and began his screen career with Hum Ek Hain. 1946 mein ye film bani thi. Siddhi brought him early success, but Bazi in 1951 helped establish the Devanand audiences would come to recognize instantly urban, romantic, restless and effortless modern. And through CID, Paying Guest, Kala Pani, Hum Dono, Tere Ghar Ke Saamne, Guide, Jewel Thief and Johnny Mera Naam, he became one of the defining stars of post-independence Hindi cinema. And in 1949, he established Navketan Films, creating a banner that became central of some of Hindi cinema's most influential films and brought together talents including Chetanand or Vijayanand and Gurudat. Inki ek team ban gayi thi. Guide, jo 1965 mein aayi, remains perhaps the most ambitious expression of his cinema. Produced by Devanand and directed by Vijayanand, it moved beyond conventional romance into questions of desire, morality, spiritual transformation and personal freedom. Devanand's performance earned him the Filmfare Award for Best Actor for this film, jiska geet bhi aapne suna, aur umeed karti hu aapne Guide ka mera chuna hua geet pasand bhi kiya. अब मैंने दो गीतों की आपको चॉइस दी थी कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, प्रेम पुजारी का फूलों के रंग से या शोखियों में घोला जाए। ज़्यादातर वोट्स जो हैं जिस गीत को मिले हैं वो प्रोग्राम में शामिल होगा, लेकिन उससे पहले ज़रा बता दूं कि गाइड का गीत आप तक किसने पहुंचाया।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai
4: Like a Gold.
3: Like a Gold.
0: Aur jo geet maine chun liya hai usme किसकी किसकी सहमति है, वेल कुछ एक नाम मैं लिख पाई हूँ। देशराज जी, थैंक यू। हंसा बोरा, विशाल जी, रानी फ्रॉम स्लाव, उल्लास जी एंड फाल्गुनी मुकेश इन लिस्बन, एंड आप सब ने ये गीत सुनना पसंद किया, लेकिन कुछ एक ने सुनना चाहता दूसरा वाला गीत, किसी और रोज़ ज़रूर शामिल करूँगी। अमित जी, भारती जी, मिसिस शेख एंड भानु जी, सॉरी आज आपकी पसंद पूरी नहीं हो रही है।
3: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
5: जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: लता मंगेशकर एंड किशोदा की आवाज़ में आपने फिल्म प्रेम पुजारी से ये गीत सुना। हिज क्रिएटिव रेस्टलेस कंटिन्यूड बिहाइंड द सिनेमा एंड बिहाइंड द कैमरा एंड ही डायरेक्टेड फिल्म्स इंक्लूडिंग प्रेम पुजारी, हरे राम हरे कृष्ण एंड देश प्रदेश एंड लेटर प्रोडक्शन अंडर नवकेतन फिल्म्स। हरे राम हरे कृष्ण ऑल्सो इंट्रोड्यूस ऑडियंसेस जीनत अमान इन द रोल दैट मेड हर अ स्टार।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
0: और सरिता जल्दी से बता दे आपको पंजाबी लेजेंड लखविंदर वडाली इज कमिंग एंड फ्राइडे 16th अक्टूबर को एट क्रिस्टल ग्रैंड स्लाव एंड संडे 18th अक्टूबर को एट ICC बर्मिंगम में। और इसके अलावा आ रही हैं कविता कृष्णमूर्ति, द लेजेंड कविता कृष्णमूर्ति परफॉर्म्स लाइव एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1st November, ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एज ए दिवाली स्पेशल एंड टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू बॉक्स ऑफिस। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो नेटवर्क। और भी और एक और इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है और वो है जियो हॉटस्टार के बारे में। कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड ऑल्सो ऑन जियो हॉटस्टार। डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो हॉटस्टार ऐप नाउ एंड जियो हॉटस्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
1: सरिता सबरवाल, द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका गोल्ड, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: भाई इस बड़ी हमारे एक्स्ट्रा लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट में बहुत अच्छी बातचीत है, आप ज़रूर सुनिएगा। होस्टेड बाय रूबी रजा एंड डॉनी ब्रास्को, राज बदन टॉक्स टू रूबी रजा एंड डॉनी ब्रास्को अबाउट स्टेपिंग इनटू द रोल ऑफ सीईओ ऑफ वन ऑफ ब्रिटेन्स लार्जेस्ट एशियन रेडियो नेटवर्क। हिज जर्नी बिहाइंड द टाइटल सुनने के लिए, देखने के लिए तैयार हो जाइए और ज़रूर वॉच कीजिएगा। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Oh, how relaxing was that yoga session? I feel so free.
3: Speak for yourself. I can never let go. Bladder leaks.
2: I know, right? I'm so done compromising. I got a new bit of yoga kit. Always discreet pads. Here, try for yourself next week.
3: Love you lots, but this thin pad won't keep up with my heavy leaks.
2: Just trust me on this one. So, all zen and liberated, are we?
3: Let's just say I found my flow.
2: Always discreet. Live with no compromise.
4: This is Leica Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
7: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
8: London, get ready for an unforgettable night.
9: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
8: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
9: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
8: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
9: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
8: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
10: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
11: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?

0: इन गीतों के जरिए हमने देव जी को याद किया। देवानंद एक ऐसा नाम जिनका नाम लेते ही पता चलता है कि वो जैसे एक अलग सी पर्सनैलिटी थी, और उनसे मिलने का भी मौका मिला। मैंने उनको स्टेज पर इंट्रोड्यूस कराना था, बजाय मैं उन्हें इंट्रोड्यूस कराती वो खुद दौड़ कर गई, और उन्होंने कहा जिस लेडी ने मुझे इंट्रोड्यूस करना है मैं उनको स्टेज पर बुलाता हूँ। आई गॉट सो मैनी मेमोरीज टू शेयर, और ऐसी बातें सुनकर सोचकर भी बहुत खुशी होती है। एंड जो मेरे साथी बराबर मेरे साथ जुड़े हैं कह रहे हैं ये सावर में तो और भी ज़्यादा मज़ा आ गया, तो मुझे भी मज़ा आता है जब आप मुझे लिखकर भेजते हैं कि गाने बहुत पसंद आ रहे हैं और प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। थैंक यू, इंडिया से भी विशेज आ रही हैं, आपने मैसेज भेजा है। दर्शन जी थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत। और नेक्स्ट आवर में वेल पहले दो गाने होंगे वो फिल्में जो आज के दिन रिलीज़ हुई हैं, और उसके बाद कविता कृष्णमूर्ति हैं हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक, एंड उसके बाद कुछ एक गीत मैं शामिल करूंगी हेमंदा की आवाज़ में गाए हुए। और बता दूं सैंडी शाह लेकर आते हैं आपके लिए विंटेज गोल्ड, लेकिन उनकी जगह आज आ रहे हैं सुप्रतिम, तो सुप्रतिम जी का भी आप साथ देंगे। पर अभी मैं नेक्स्ट आवर में आप ही के साथ हूँ, तो कहीं जाने का नहीं है, इसी तरह से मेरा साथ देते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम समाचारों की तरफ। समाचारों के उस पार मैं सरिता आप ही के साथ हूँ टिल 7 o'clock।
1: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
2: Top stories this hour. Manchester City chairman Khaldun Al-Mubarak has reaffirmed his belief the club will prove their innocence in their Premier League financial rules case. It's understood the process is moving to the appeal stage after reports claim most of the 115 charges against the club were found to have been proven by an independent tribunal. Former City chairman David Bernstein wants a swift resolution.
3: I really hope that this gets dealt with promptly and quickly and also openly, because it's very much been held in secret up to now in camera, which I don't think is a very healthy thing. So I would like to see it open and certainly speedy.
2: Andy Burnham's announced a new scheme to help first-time buyers get on the housing ladder with just a 2.5% deposit. Details will be revealed at next month's budget. It's been confirmed tomorrow's Nations League game between Ireland and Israel will go ahead after a player vote. Ireland's manager, Heimir Hallgrimsson, insists their intentions are purely sport-based.
4: We are not supporting anything that's happened in Gaza. We are playing this fixture because it's the rules of our game. We are playing this fixture because it's the rules of the competition we are in. We said from the beginning, nobody is comfortable playing this game for so many reasons.
2: Hundreds of thousands of people have joined Pope Leo for an open-air mass in Paris. It's the first papal visit to France in 18 years. A gang that plotted to import cocaine and ketamine into the UK hidden in frozen fish has been jailed for a total of more than 71 years. It followed a long-running investigation into the so-called fish conspiracy. In sport, Scotland began their Nations League campaign with a goalless draw away to Slovenia in their first game under their new manager. England kick off against world champion Spain at Wembley this evening. George Russell won the Azerbaijan F1 Grand Prix following a thrilling finish with Max Verstappen in Baku. And England women grabbed a last grasp 26-19 victory over New Zealand in rugby union's WXV.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: राइट, बता दें आपको आज रात पार्टली क्लाउडी रहेगा और लाइट विंड्स चलती रहेंगी। लो इट विल गो लो टू 12 डिग्री सेल्सियस इन लंदन एंड इन सराउंडिंग एरियाज। कल 23 रहेगा टेम्परेचर, लेकिन बारिश की भी संभावना है। एंड मैनचेस्टर में इस वक्त है 18, इट विल गो डाउन टू 10 एंड टुमारो इज 19 डिग्री सेल्सियस। एंड इन मिडलैंड आज सनी रहा एंड इट विल गो डाउन टू 7 डिग्री। एंड कल का मौसम भी ठीक ठाक है, कल भी 22 डिग्री रहेगा टेम्परेचर। अपने दिल के टेम्परेचर को ठीक रखिए ना, बाहर का मौसम जैसा भी हो।
1: फॉर स्पेशल रेट्स टू इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, मालदीव्स, थाईलैंड, USA, कनाडा, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
5: Like a gold.
1: Sarita Samuel.
0: प्रोग्राम के लास्ट एंड द फाइनल आवर में आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करती हूँ। प्रोग्राम के इस आवर के पहले दो गाने 80s के हैं और ये दोनों फिल्में आज ही के दिन रिलीज हुई थी। ज़रा गीत सुनिए और मुझे बताइए कौन सी हैं ये फिल्में, क्या आपको नाम याद हैं? अगर नाम याद हैं तो बता दीजिए।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
5: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
0: TravelHub.
5: At all protected.
1: Leica. Sarita Samuel.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, दोनों ही बहुत प्यारे गीत थे। एंड बता दूं कि ये दोनों फिल्में जो हैं वो आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी इन 1980। पहला गीत फिल्म जुदाई से चुना था मैंने, फिल्म जुदाई 1980 की फिल्म। एंड इस फिल्म को टी रामा राव ने बनाया था, डायरेक्ट किया था उन्होंने। एंड इस फिल्म में जितेंद्र एंड रेखा ने काम किया था। फिल्म का संगीत किसने दिया था याद है आपको? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत और गाने इस फिल्म के आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे। मार गई मुझे तेरी जुदाई, ये वाला गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था। एंड जो मैंने गीत प्ले किया मौसम सुहाने आ गए, ये गाना भी काफ़ी मशहूर हुआ था। सामने आ देखें ज़माना सारा, ये गाना भी इसी फिल्म का है। और इस फिल्म के अवार्ड्स की बात करें तो 1981 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेट किसे किया गया था? बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रेखा को एंड बेस्ट कमेडियन देवेन वर्मा जी को। सो अगर फिल्म नहीं देखी है, कभी भी मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। दूसरा गीत मैंने पूछा चांद से, एक आइकॉनिक गाना है, बहुत पसंद किया जाता है। जब कभी भी हम प्ले करते हैं तो रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गीत आपके दिल के करीब है, क्योंकि इसमें महबूबा की तारीफ है। तो जब भी कोई महबूब अपनी महबूबा की तारीफ करना चाहता है तो इस गीत का सहारा ज़रूर ले लेता है। संजय खान ने इसे डायरेक्ट किया था एंड कादर खान साहब ने डायलॉग्स लिखे थे इस फिल्म के। फिल्म में राज कपूर थे, संजय खान थे, जीनत अमान थी एंड डैनी डेंजन गप्पा ने काम किया था। फिल्म का संगीत था आरडी बर्मन साहब का और आनंद बख्शी साहब ने इस फिल्म के भी गीत लिखे थे। बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठीक चली थी ये फिल्म, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी, लेकिन इस गीत को बहुत पसंद किया गया था। और जिन मेरे साथियों ने अभी अभी सुनना शुरू किया उनका मैं स्वागत करती हूँ। आपके मैसेजेस मुझे बराबर मिले हैं, थैंक यू। कुछ गीतों की फरमाइशें थी, देवानंद की फिल्म का गीत सुनना चाहते थे, दर्शन जी इन इंडिया बड़ा इंतज़ार कर रहे थे लेकिन मैं नहीं शामिल कर पाई, बम्बई का बाबू का गीत। लेकिन मैं आज सुप्रतिम प्रोग्राम कर रहे हैं विंटेज कूल, तो मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ये गाना शामिल कर दें। ज्योति गिरी शाह, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने लिखा है बोथ द सॉन्ग्स आर वेरी नाइस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मनु जी, हंसा वोरा जी और जिनके नाम नहीं मैं अर्लियर ले पाई थी उन सबसे माफ़ी चाहती हूँ। एंड प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK के जरिए पैसे अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी तो काम बड़ा आसान है। You can walk into the branch, ऑनलाइन कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड किया हुआ है SBI यूनो ऐप, तो उसके ज़रिए घर बैठे ही आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज आपका 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड कैन गेट यू 126 रुपीस एंड 40 पैसे एंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Home is not just where you live, it's where life happens. This September, discover a Mercedes-Benz that's ready for whatever's next. Like the A200 AMG Line Executive Hatchback, now available from £299 a month, with an advance rental of £7,411. Plus, enjoy your first two services for free. Visit your local showroom today. Welcome home. PCH offer ends 30th of September. Four-year lease subject to status and availability. T's and C's apply. Mercedes-Benz Finance covering 1A and 1B service. Mileage intervals apply.
1: Sarita Summerwall with your weekend classics. Like a gold. This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत कोयला फिल्म से हमने चुना था। माधुरी दीक्षित पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। कुछ गीतों के साथ बड़ी यादें जुड़ी होती हैं। हमारी एक लिसनर्स थी जिनका नाम था सूर्या सेठी जी, अक्सर इस फिल्म इस गीत की रिक्वेस्ट मुझ तक पहुँचाया करती थी। एंड सूर्या जी, अगर आप सुन रही हैं तो ये गीत मैंने आपके नाम किया। कविता कृष्णमूर्ति इस हफ्ते की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक, और मुझे उम्मीद है कि ये गीत आपको भी जरूर पसंद आया होगा। और अब
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।
0: एक श्रद्धांजलि हेमंता को उनकी डेथ एनिवर्सरी पर, उनके ही गाए हुए कुछ एक गीत आपके नाम।

0: The voice like no other, where words cannot be justice. Words cannot do justice to the quality of that voice, which seems to soothe away the pain of broken heart, fondly called the voice of God. Hemant Kumar was a genius musician, legendary singer who sang in Bengali, Urdu, Marathi, Gujarati, Odia, Assami, तमिल, पंजाबी, भोजपुरी, कोंकणी एंड संस्कृत में भी गाए उन्होंने गाने. हेमंत कुमार वॉज बॉर्न एज हेमंत मुखर्जी ऑन 16th of June इन 1920 इन वाराणसी इन अ बंगाली फैमिली एंड 26th of September इन 1989 ही पास्ड अवे. लेकिन वो इतना ख़जाना देकर गए हैं हमें, इतने प्यारे प्यारे गीत कि उनकी आवाज़ सुनते ही रूह को आराम मिलता है. हेमंत कुमार सैंग फॉर फिल्म्स लाइक इरादा इन 1944. बहुत से 40s में उन्होंने फिल्मों के लिए गीत गाए, हमराही, बिंदिया, ज़मीन आसमान, फैसला एंड मंदिर, मनमानी, माला, मालदार एंड सजा. लेकिन ही डेब्यूट एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर विद द बंगाली फिल्म के साथ उन्होंने डेब्यू किया था एंड एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर. लेकिन हिंदी की पहली फिल्म उनकी थी आनंद मठ इन 1952, विच हैज़ iconic songs like Vande Mataram and Jai Jagadish Hare. आपको ज़रूर याद होगा. One of the most notable Hindi films of Hemant Kumari's early career as a music director was Nagin in 1954, जिसके सारे गाने बड़े मशहूर हुए थे. मंडोले तंडोले, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, मेरे दिल ये पुकारे आजा, ऐसे गाने दिल चाहते हैं सारे के सारे गाने मैं शामिल करूँ. लेकिन कुछ एक गीत प्रोग्राम के इस आवर में शामिल हैं. बता दूं ये गीत मैंने फिल्म खामोशी से चुना था, तुम पुकार लो, हेमंदा की आवाज़ में. और ये गीत आप तक पहुंचाया किसने?
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Aur Southall Travel wale aapko batana chahte hain ki they are known for its competitive holidays deals to Dubai, and contact Southall Travel today on 0208-574-8410. Southall Travel is atoll protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.

0: हेमंत दा को याद किया हमने इन गीतों के जरिए। वैसे तो बहुत सारे गीत है, बहुत सी बातें और करनी थी, लेकिन क्या करूं, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है और मेरे जाने का वक्त बिल्कुल करीब है। और मैं बता दूं कि एक और गीत है जो शामिल होगा और वो है फ्रॉम द फिल्म ममता, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। और ये गीत मैं अपनी तरफ से आप सभी के नाम करती हूँ और मैं चाहती हूँ इसी तरह से अपना प्यार मुझ तक पहुँचाते रहिएगा। वसंती एडमंटन से आपने अभी याद किया है एंड आप हैं भारती जी, एंड देन बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, शानू गांधी, सोइनी रावल जी, आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और यही कहूँगी 4 बजे से मेरे साथ जुड़ा करें। जी हाँ, 4 से लेकर 7 बजे तक मेरा और आपका साथ होता है। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो कल मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊँगी 4 बजे की खबरों के बाद। और अब मेरे बाद आ रहे हैं यहाँ लाइका गोल पर प्रतिम, सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह, और दूसरी तरफ होंगी सोनिया, एंड मैनचेस्टर में आपका साथ देंगे अंकुर। जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं इसी तरह से इंजॉय कीजिएगा एंड हैव ए लवली एंड सुपर्ब इवनिंग। मेरी तरफ से बाय बाय, टेक केयर एंड बाय।
1: लाइका This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Watford mein dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
3: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
2: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
3: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923-227274. Book your table today.
4: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी, रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी। कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा। वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे, फर्स्ट फ्लोर, यूनिट 2, साउथ राइस्लिप, HA40JS। रोज कथा पछी महाप्रसाद, पोथी यात्रा, कपिल नारायण कथा, कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ। बधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-22-87509.
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
5: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
5: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
7: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.

0: और अब मेलेडियस सॉन्ग छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। गुड इवनिंग टू एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रतिम, आई एम सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह दिस इवनिंग एंड यू आर लिसनिंग टू विंटेज गोल्ड, दैट सेम प्रोग्राम विच हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑफ द 40s, 50s, 60s एंड सम फ्रॉम द 30s एज वेल। सो स्वागत है आपका एक बार फिर। आई होप यू एंजॉय दीज टू बैक टू बैक सॉन्ग्स। देर वॉज समथिंग कॉमन इन दोज टू सॉन्ग्स, बोथ वर पिक्चराइज ऑन द ग्रेट एवरग्रीन क्लासिक एक्टर दैट वी हैड कॉल्ड देवानंद। देवानंद साहब की आज 103rd बर्थ एनिवर्सरी है एंड उस एज अ ट्रिब्यूट वी आर प्लेइंग सम ऑफ हिज मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एंड आई एम श्योर माई कॉलीग्स वुड हैव ऑल्सो प्लेड सम वंडरफुल सॉन्ग्स बिफोर मी। थैंक यू टू सरिता जी हु वॉज इन द हॉट सीट बिफोर मी एंड आई नो शी इज प्लेड सम रियली beautiful numbers both from recent films as well as oldies from the time of Devanand Sahab. So aage badhne se pehle main aapko bata dun ye jo gaane dono aapne sune kaun si film se the, they were from Paying Guest jo Devanand Sahab Nutan ji ke sath thi isme and SD Barman ki khoobsurat music aur usse pehle Dil Ka Bhawar Kare Pukar jo aapne gaana suna wo Kalam Ka Jadoo tha Hazrat Jaipuri Sahab ka, SD Barman ka sangeet and Nutan was in that with Devanand as well. I hope you enjoyed both these songs. There are more coming, really beautiful ones on their way. But usse pehle, how was your Saturday? I hope you're having a good weekend. The weather has been absolutely amazing, at least in and around London. So I'm hoping you're enjoying this remaining sunshine that we have for the year. And I hope may that remain. But लाइक अ गोल्ड में गाने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है एंड वी मेक श्योर दैट द सॉन्ग्स ऑलवेज कीप यू एंड मेक यू फील हैप्पी। इसके बाद जो गाना आएगा वो एक बहुत ही अलग है, नमस्ते नमस्ते फ्रॉम द फिल्म पतंगा। सुनते रहिए विंटेज गोल्ड, मेरा नाम है सुप्रतिम, सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह टुडे।
1: WhatsApp message Like a Gold now on 0744 23 23 23.

0: है लाइका गोल्ड।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
2: Your £1 today could get you 126.40 Indian rupees. Don't forget to make the transaction in a branch, online or SBI Yono mobile app, which is the most convenient option. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: September means serious savings on blinds, curtains and shutters in the Hillary Super Sale. And right now, the savings are even bigger, with an extra 15% off absolutely everything until the 29th of September. That's on top of up to 40% off hundreds of made-to-measure styles. Plus, this autumn, get a free blackout thermal lining on our favourite Roman blinds and curtains. And don't forget, with Hillary's, measuring and fitting is always included. So get window wise and book your free in-home appointment today at hillarys.co.uk. Conditions apply.
0: ये है लाइका गोल्ड तुम देना
4: साथ मेरा। दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा एवरी डे एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
5: माया भाई नी मौजवाण मा थई जाओ रेडी। माँ कृपा फाउंडेशन्स यूके प्रेजेंट्स भव्य डायरो। माया भाई आहिर, जयश्री भोजविया अने निर्मल सिंह झाला साथे।
6: 27 सितंबर 2026 ना रोज वेन्यू फर्स्ट फ्लोर यूनिट 3 10 स्टोन फील्ड वे साउथ राइसलीप HA40JS। टिकट्स 30 अने 20 पाउंड्स। लाइट रिफ्रेशमेंट्स इंक्लूडेड। बुकिंग माटे कॉल करो रश्मि शाह 0772-287-509।
7: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
8: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
7: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
8: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
7: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
9: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
10: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
9: ये तो बताओ, कोई पता चला?
10: गुरु गुरु,
11: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
9: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
11: शीघ्र शीघ्र। क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November।
12: टू बुक कॉल 0208-514-5400. Book online at Eventbrite.
13: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
14: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल. At all protected.

0: ऑल टाइम ग्रेट सॉन्ग, ऑल टाइम ग्रेट एक्टर राज कपूर साहब की आवारा फिल्म से था ये गाना, एंड इसके लेखक थे शैलेंद्र साहब एंड सिंगर ऑब्वियसली मुकेश जी. एंड इफ यू वुड हैव नोटिस्ड आफ्टर द सॉन्ग फ्रॉम नौशाद साहब विच वॉज द प्रीवियस वन, दिस वन हैड मैनी मनी मोर इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज शंकर जयकिशन लव्ड टू हैव द इंटायर ऑर्केस्ट्रा इन प्लेस. एंड वॉट अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. ये गाना एवरग्रीन है, हर जगह ये बजता है, गाया जाता है. इसको, इस गाने को इतने साल हो गए लेकिन इट्स स्टिल इन द लिप्स ऑफ सो मेनी पीपल फ्रॉम साउथ एशिया बट ऑल्सो फ्रॉम यूक्रेन, चाइना, रशिया. वॉट अ वंडरफुल सॉन्ग, वर्क्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स. कुछ मैसेजेस और उसके बाद एक बहुत ही फील गुड गाना फिल्म राम और शाम से.
1: Hello, wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m, like a gold and like a Radio Midlands.
2: When the window wise are serious about shutters, they trust the experts at Hillary's. And with the Super Shutters sale, you can save up to 40% off hundreds of made-to-measure shutters, plus an extra 15% off absolutely everything, including our UK-made shutters, fitted in as little as 3 weeks, so you can get the perfect look for your home sooner than you'd think. And don't forget, with Hillary's, measuring and fitting is always included. So book your free in-home appointment today at hillarys.co.uk. Conditions apply.
3: This is Like a Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley.

0: लता जी की खूबसूरत सुरीली आवाज आपको एक मिनट के लिए, आई थिंक इट लीव्स यू अ बिट क्वाइट, डोंट नो व्हाट टू से आफ्टर दैट. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. फिल्म का नाम नौजवान, 1951 की एक फिल्म, एस डी बर्मन जी का खूबसूरत संगीत, साहिर साहब की कलम का जादू. होप यू एंजॉय दिस सॉन्ग. ऐसे ही और भी बहुत गाने आने वाले हैं. मेरा नाम है सुप्रतिम, आई एम सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह टुडे एंड टुमारो. सो दोनों दिन आप मेरी आवाज़ सुनेंगे, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली आप बहुत बेहतरीन विंटेज गोल्ड के गाने सुनेंगे. सुनते रहिए कुछ मैसेजेस और उसके बाद ऐसे ही बेहतरीन गाने.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: £1 today can get you 126.81 Indian rupees, 85.93 Afghani, 367.06 Pakistani rupees, 162.91 Bangladeshi taka, 436.98 Sri Lankan rupees, 171.65 Kenyan shilling and 1.32 US dollars.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold rate for today is £104.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Like a gold. This is Leica.

0: What a beautiful song. बाबुल मोरा, ये थी आवाज़ KL सहगल साहब की. KL सहगल साहब थे असली ओरिजिनल, जिसे OG कहा जाता है आजकल, सुपरस्टार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, मच बिफोर द अमिताभ बच्चन एंड राजेश खन्ना केम इनटू द सीन. आई होप यू एंजॉय दिस सॉन्ग. ऐसे और गाने आएंगे सेकंड आवर में. हम आ चुके हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट आवर, लेकिन मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना है फ्रॉम द फिल्म अमर कहानी, सुरैया जी की आवाज़ में. सुनते रहिए विंटेज गोल्ड. आई विल सी यू ऑन द अदर साइड आफ्टर द न्यूज़.
1: लंदन, मिडलैंड्स, मैनचेस्टर. This is the Leica Radio Network.

0: मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: वेलकम बैक टू द सेकंड आवर ऑफ विंटेज गोल्ड। मेरा नाम है सुप्रतिम, आई एम सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह टुडे एंड टुमारो बोथ। ये जो गाना आपने सुना, दिस वॉज फ्रॉम द फिल्म तुमसा नहीं देखा, 1957 की एक खूबसूरत फिल्म जिसमें थे शमी कपूर एंड अमिता जी एंड प्राण साहब। और ये जो गाना आपने सुना, दिस वॉज फ्रॉम बाय मोहम्मद रफ़ी साहब एंड आशा भोसले, लिरिसिस्ट मजरू सुल्तानपुरी एंड म्यूज़िक डायरेक्टर ओपी नैयर साहब। उससे पहले जो गाना था हमदम मेरे मान भी जाओ, एक और खूबसूरत गाना रफ़ी साहब की सुरीली आवाज़ में, इसमें थे आशा पारेख एंड विश्वजीत जी, मेरे सनम फिल्म का नाम, और ओपी नैयर जी का संगीत एंड मजरू साहब की कलम का जादू। आई होप यू एंजॉयड दिस टू बैक सॉन्ग्स। ऐसे और भी गाने आते हैं विंटेज गोल्ड में, एंड इससे पुराने भी गाने होते हैं। फॉर दोज हुव जस्ट जॉइंड अस और न्यू टू द शो, एक बार याद दिला दें कि विंटेज गोल्ड इज़ द ओनली प्रोग्राम दैट यू फाइंड ऑन यूके चैनल्स, ओनली ऑन लाइक अ गोल्ड, वेयर वी प्ले सॉन्ग्स फ्रॉम और क्लासिक्स रादर फ्रॉम द 40s, 50s, 60s एंड सम फ्रॉम द 30s एज वेल। सो अगर आपको पुराने गाने पसंद हैं, अगर आप पुराने गाने सुनने चाहते हैं और उनके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट प्रोग्राम फॉर यू एवरी वीकेंड 7 PM टू 10 PM। नॉर्मली इट्स सैंडी शाह हू सैट देयर, बट टुडे आई एम कवरिंग फॉर हिम। Irrespective, the songs are always wonderful. इसके बाद एक गाना आएगा from रफ़ी साहब की आवाज़ है उसमें, लेकिन we are celebrating or marking the 103rd birth anniversary of the great Devanand साहब, so I'm sure you'll enjoy this song, both for Devanand's beautiful acting but also रफ़ी साहब's versatility. सुनते रहिए विंटेज गोल्ड, मेरा नाम है सुप्रतिम।
2: WhatsApp message like a gold now on 0744 23 23 23.

0: क्या खूबसूरत आवाज रफ़ी साहब की, और अदाकारी थी देव साहब की। फिल्म का नाम काला पानी, 1958 की एक फिल्म। आज हम मना रहे हैं देव साहब की 103rd बर्थ एनिवर्सरी। धर्मदेव पिशोरी मल आनंद नाम था इनका, जब ये शकरगढ़ पंजाब अनडिवाइडेड इंडिया में ही वॉज बॉर्न ऑन दिस डे 1923। So from there he rose like a star, and we all know his class and his style and his charisma. आज तक लोग उनके फ़ैन हैं और उनके बारे में बहुत ही उससे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, they look up to him. हम ऐसे ही गाने कुछ और देव साहब के भी बजाएंगे, उसके अलावा जो विंटेज गोल्ड की जो खूबसूरती है पुराने गानों की, दैट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग थ्रू द शो। आई एम विथ यू टिल 10 o'clock, माय नेम इज सुप्रतिम। कुछ मैसेजेस और उसके बाद अनदर ब्यूटीफुल नंबर ऑन योर वे।
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: If you want to transfer money to India, £1 will get you 126 rupees and 40 paise, and you can do this through the branch, online, or the best option, try the SBI Yono mobile app. Terms and conditions always apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Need anything from Tesco? How about winning the best night in ever with one of 50 tech bundles worth £10,000? Spend £25 in-store or online with your club card to qualify. Tesco. Every little helps. UK and Isle of Man 18 plus only, club card required. Spend £25 on qualifying purchases in store or online. Max one entry per day. T's and C's restrictions and exclusions apply.
3: Yeah. Leica Gold.
4: This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: हमारी रक्षक है वो।
6: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
7: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
6: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन,
8: समझो ना।
6: द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज नाउ। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place. 11, 11.
11: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
13: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
14: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
15: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
14: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
15: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
14: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
15: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
16: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
17: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
16: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
18: You know how fans shout at football matches?
19: Oh, wake up!
18: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
19: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
20: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
21: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: के डर से।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: थैंक्स टू डेरी वैली फॉर दैट फील गुड सॉन्ग। सदाबहार शमशाद की आवाज़ थी, फिल्म का नाम अनोखी अदा, 1948 की एक सुपरहिट फिल्म। इसके बाद एक गाना आने वाला है हेमंत कुमार मुखर्जी एंड लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, उसके बारे में हम उस गाने के बाद बात करेंगे। इन्जॉय द शो, माय नेम इज सुप्रतिम।
4: ये है लाइका गोल्ड, 10:35 AM.
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Sandy Shah.

0: नींद न मुझको आए, ये थी फिल्म पोस्ट बॉक्स 999 1958 की एक फिल्म। इसमें जो आपने आवाज़ें सुनी ये थी हेमंत कुमार मुखर्जी एंड लता मंगेशकर जी की। आज ऑल्सो हैपन्स टू बी हेमंत कुमार मुखर्जीज डेथ एनिवर्सरी। ही पास्ड अवे ऑन दिस डे 1989 इन कोलकाता एट द एज ऑफ 69। इन्होंने अपनी जो उनकी काफ़ी लंबी करियर थी इसमें अबाउट 2000 उन्होंने गाने गाए होंगे इन वेरियस लैंग्वेजेस, मोस्टली इन बांग्ला, हिंदी, उड़िया, एसमीज एंड मेनी अदर साउदर्न लैंग्वेजेस एज वेल। सो ही वॉज अ टारिंग फिगर ऑफ हिस टाइम। कुछ और उनके भी गाने हम सुनेंगे और देव साहब के भी, लेकिन उससे पहले कुछ मैसेजेस।
1: ये है लाइका गोल्ड।
0: वेल, हैव यू हर्ड ऑफ द न्यू गेम शो कॉल्ड इंडिया के टॉप 1%? दिस इज होस्टेड बाय अनिल कपूर। इट्स एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉट स्टार। डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो हॉट स्टार ऐप नाउ एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई TV एज एन ऐप। सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर? Download it now.
1: Leica Gold. Vintage Gold with Sandy Shah on Leica Gold, Greater London.

0: और एन एक्सीलेंट सॉन्ग, लता जी की खूबसूरत आवाज़, मजरूह साहब की कलम का जादू था इसमें, एंड रोशन साहब का खूबसूरत म्यूज़िक। फिल्म का नाम ममता, आई होप यू इन्जॉय दिस सॉन्ग। ऐसे ही और गाने आने वाले हैं। कुछ मैसेजेस से पहले, लेकिन जाइएगा कहीं मत, बिकॉज एक बहुत ही खूबसूरत महेंद्र कपूर का गाना है राइट आफ्टर दैट।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact Southall Travel today on 0208-574-8410. Remember, Southall Travel is at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए।

0: कांट रियली आस्क फॉर मोर बिकॉज इसमें जो आवाज़ें आपने सुनी ये थी सदाबहार शमशाद, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, ऑल दी लेजेंड्स ऑफ हिंदी फिल्म म्यूज़िक, और उपी नैयर साहब की म्यूज़िक थी इसमें, एंड जान निसार अख्तर इसके लिरिसिस्ट थे, जान निसार अख्तर जो जावेद अख्तर के वालिद साहब हैं, किशोर कुमार इसमें ही वॉज द मेन एक्टर, नया अंदाज 1956 की एक फिल्म, कुछ मैसेजेस और ऐसे ही बेहतरीन गाने आर ऑन द वे. माय नेम इज सुप्रतिम, सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह.
1: गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: A British pound can get you 126.79 Indian rupees, 85.95 Afghan Afghani, 367.09 Pakistani rupees, 162.92 Bangladeshi taka, 437.02 Sri Lankan rupees and 1.32 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold rate for today is £104.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: Like a Gold.
1: Tune in to Like a Gold, London's number one Asian retro station on the Like a Radio mobile app.

0: ये थी फिल्म सन्यासी से एक बेहतरीन गाना, अमर साहब की आवाज़, 1945 की एक फिल्म. वेल, हम देखते देखते आ चुके हैं अपने सेकेंड आवर के एंड पे. एंड लाइक आई मेंशन, टुडे इज़ द डेथ एनिवर्सरी ऑफ हेमंत कुमार मुखर्जी. सो आई विल लीव यू विद अ ब्यूटिफुल सॉन्ग विद लता मंगेशकर एंड हेमंत जी टुगेदर फ्रॉम द फिल्म पतीता. उस तरफ आएगा न्यूज़, एंड न्यूज़ के बाद आई विल बी बैक विद मोर सॉन्ग्स फॉर यू.
1: ये है Like a Gold.
2: क्योंकि सांस भी कभी.
3: This part of the show is sponsored by क्योंकि सांस भी कभी बहुत थी. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: What a wonderful song. Welcome back to the third hour of Vintage Gold. Mera naam hai Supratim. I'm sitting in for Sandy Shah. And you just heard the most beautiful song sung by a very beautiful person called Mannada. Ye gana, I was lucky enough to hear him sing live just with a harmonium. And he was in his 80s. And isi scale mein unhone ye gana gaya. And it was absolutely amazing that at that age, that man could have that control on his voice. फिल्म थी काबुलीवाला जो रविंद्रनाथ टैगोर की नॉवल काबुलीवाला पे आधारित थी. म्यूजिक डायरेक्टर इसके थे सलील चौधरी और प्रेम धवन की कलम का जादू था इस गाने में. और उससे पहले जो गाना आपने सुना दैट वाज फ्रॉम द फिल्म नया दौर, दिलीप साहब थे उसमें वैजयंती माला बाली के साथ, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की खूबसूरत आवाज़ें, साहिर के लिरिक्स और ओपी नैयर साहब का म्यूज़िक. आई होप यू इन्जॉयड बोथ द बैक टू बैक सॉन्ग्स. आई रियली लव्ड सिंगिंग अलॉन्ग. हालांकि मेरी आवाज़ बहुत ही ख़राब है लेकिन स्टूडियो में और कोई सुन नहीं पाता. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. लाइक आई सेड, आई एम सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह. दिस इज़ विंटेज गोल्ड. इट इज़ एवरी वीकेंड बिटवीन 7 and 10 PM. I will be there with you till 10 p.m. tonight and I will be there tomorrow as well. Iske baad hum sunenge ek aur behtareen gana lekin uski kahani kuch alag hai. Main bataunga right after this.
1: WhatsApp message like a gold now on 0744 23 23 23.

0: एसडी बर्मन की मधोश कर देने वाली आवाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एवर हियर इन द हिंदी सॉन्ग्स दैट ऑफ दैट एरा. बंदनी फिल्म का नाम, 1963 की एक खूबसूरत फिल्म थी. नूतन जी इसमें वर द मेन एक्टर्स, नूतन जी, अशोक कुमार साहब एंड धर्मेंद्र जी. ये शैलेंद्र की लिखी हुई संगीत है और एस डी बर्मन साहब का म्यूजिक. लाइक आई सेड, आई ऑलवेज वंडर्ड व्हाई डजंट एस डी बर्मन और व्हाई डिडंट ही सिंग मोर सॉन्ग्स. ही हैड सच अ ब्यूटीफुल एंड अ डिफरेंट वॉइस. आई होप यू एंजॉयड दिस. थैंक यू फॉर योर मैसेजेस. कीप देम कमिंग. आई एम हियर टिल 10 o'clock विद यू.
1: Classics to make your weekends feel good. This is Sandy Shah on Like a Gold.

0: मन्ना दा की खूबसूरत आवाज़, फिल्म का नाम देख कबीरा रोया, एक 1957 की बहुत ही खूबसूरत फिल्म। कुछ मैसेजेस और उसके बाद रफी साहब की मधुर आवाज़।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी। कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा। वेन्यू 10 Stonefield Way फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइस्लिप HA40JS। रोज कथा पछी महाप्रसाद, पोथी यात्रा, कपिल नारायण कथा, कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों मा जरूर जोड़ाओ। वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-228-7509।
5: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
6: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
5: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
6: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
5: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner Leica Radio Network.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: Search is changing.
9: Customers aren't just using Google anymore.
8: They're asking AI.
9: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
8: One business, one recommendation.
9: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
8: Will your business be the answer?
9: Or the one that got left behind?
8: The future of search has already started.
9: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
8: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
10: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
11: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Feel good tracks all weekend with Sandy Shah on Leica Gold Greater London.

0: क्या आवाज है हेमंत कुमार मुखर्जी की, बेहतरीन आवाज। फिल्म का नाम अनुपमा, फीचरिंग द डैशिंग एंड सच अ हैंडसम धर्मेंद्र जी। आई होप यू एंजॉय दिस सॉन्ग। कुछ मैसेजेस, उसके बाद तलत साहब की मखमली आवाज आपका इंतजार कर रही है।
1: लाइका गोल्ड, ये रिश्ता क्या कहलाता है? दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ये रिश्ता क्या कहलाता है, एवरीडे एट 7 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
2: हमारी रक्षक है वो।
3: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
4: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
3: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज नाउ। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
5: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट। क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ। द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन विद इट्स एंबिशियस 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danu Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
7: No more worries for me.
8: Southall Travel, at all protected.
9: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
10: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
11: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
10: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
11: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
10: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
13: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
14: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Leica Gold. Leica Radio Network.

0: तलत साहब की मखमली आवाज़, फिल्म का नाम जहानारा। आई होप यू एंजॉय दिस सॉन्ग। इसी के साथ हम आ चुके हैं अपने थर्ड आवर के एंड पे, सो दी शो इज कमिंग टू एन एंड बट द सॉन्ग्स डोंट। सो गोल्ड नाइट पूरी रात चलेगी ऑन लाइक अ गोल्ड, आप सुन सकते हैं उसको। कल सुबह दीप राजा आ जाएंगे 7 बजे आपको जगाने विथ द वीकेंड गोल्ड ब्रेकफास्ट शो, एंड आई विल बी बैक टुमारो अगेन एट 7 PM टू 10 PM विथ मोर ऑफ विंटेज गोल्ड। लेकिन जाने से पहले मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ दो लेजेंड्स के हाथ, हेमंत कुमार मुखर्जी जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है, एंड देवानंद साहब जिनकी आज बर्थ 103rd बर्थ एनिवर्सरी है। और एक बहुत ही सुंदर गाना जो हेमंत साहब ने गाया था और देव साहब के ऊपर गाया गया था, 16 साल फिल्म से है अपना दिल तो आवारा। तो अपने दिल को आवारा रखिए, एंजॉय करिए, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, एंड आई विल सी यू अगेन टुमारो। गुड नाइट।
1: ये है लाइका गोल्ड।

ताली ताक झुम ताक ताली ताक झुम ताक झाला आमको ताक झुग ताक ताजी गेन ताक नाक ताक झुम ताक नाक नाक झुम ताक नाक नाक झुम ताक नाक नाक झम तारिता झग तारिता झन जाने को गुदारी दाबू तारी गेट ताक झुम तारिता झग तारिता झन जाने को गुदारी दाबू तारी गेट झम तारी झग तारी ताक नाक ताक ताक झुम ताक झुम ताक झम तारी झग तारी जाने जाने को ताक

0: Like a Gold. This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS. For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
1: फंक्शन रखा हुआ
2: है। यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
3: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा Holidays. What's your travel mantra?
4: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
5: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
6: Dubai is the place. 11,
5: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
6: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
7: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
8: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
7: Live on Sunday the 1st of November.
9: Nimura, Nimura, Nimura.
7: An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
8: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
7: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
7: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
11: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.
12: Classic Navmi, aapke apne Leica Gold par.

0: Non-stop classics. This is Like a Gold. One performer. Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover, live UK Tour 2026. 29th October, Ova Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS. For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
2: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place.
3: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02 03 963

0: खीर, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड। Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
2: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
3: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favourite shows.
4: Classic Nagme.